0: इस प्रोग्राम में अपने अजीज़ भाइयों इस्लामी जम्हूरिया ईरान के पुलिस और इंतज़ामी अमले की खिदमत में हैं, जो अपनी मसरूफियात के बावजूद यहाँ तशरीफ लाए। हम वाकई बहुत खुश हैं कि आप सब इस महफिल में मौजूद हैं। हमें आप पर फ़ख्र है। गर्मी हो या सर्दी, दिन हो या रात, आप पब्लिक की खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं। जो भी इश्क और खलूस से लोगों की खिदमत करता है, यकीनन अल्लाह के नज़दीक माजूर है। ज़ोरदार तालियों की ये दरख्वास्त है। और अब पेशे खिदमत है नौजवान कारी और हाफिज़े कुल कुरान, एक कुरानी खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब मसूद सयाफ़ज़ादे का इस्तकबाल कीजिए। बिस्मिल्लाह जनाब मसूद, ज़रा सलाम दुआ कर लीजिए।
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अदब व एहतराम के साथ सलाम अर्ज़ करता हूँ असातज़ा कराम, हाज़रीन ग्रामी, पुलिस के मुअज़्ज़ज़ अफसरान और दुनिया भर में हमें देखने वाले नाज़रीन की खिदमत में।
0: बहुत जिंदा और सलामत रहे, जिंदा और सलामत।
1: बहुत शुक्रिया।
0: तो आइए सीधे चलते हैं तिलावत की तरफ। क़ारी मुमताज़ जनाब मसूद सयाफ़ज़ादे की खूबसूरत तिलावत है। यह भी बताता चलूँ कि जनाब मसूद सयाफ़ज़ादे ने लॉ की तालीम हासिल की है और अब जज के मनसब पर फायज हैं। इनके वालिद मोहतरम और चचा दोनों मुल्क के मारूफ कुर्रा में से हैं।
2: चचा भी?
0: जी, अल्लाह सबको सलामत रखे।
3: यानी जज हैं या?
0: जी जज
2: है। ये तस्वीर इसीलिए लगी।
3: अगर कोई मुश्किल हो तो यहाँ हल कराई जा सकती है।
0: नहीं, पार्टीबाजी नहीं चलती।
3: ओके।
0: बिस्मिल्लाह जनाब।

वो जो पैमाने के नीचे बच जाता है वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। जानते हैं आप हजरत, इमाम जमाना की सिफात में से सबसे ज्यादा दोहराई जाने वाली सिफत अदल है, और उस अदल का सबसे नुमाया पहलू इक्तसादी अदल है। जब इमाम मेहदी तशरीफ लाएंगे तो सबसे पहले यही इंसाफ, यही माआशी अदल कायम करेंगे। बकियतुल्लाह खैरुल्लकुम इन कुंतुम मुमिनीन वमा अना अलैकुम बिहफीज।

आओ ये जमीन ले लो, महंगे इलाके में ले लो, हमारे साथ रहो, हमारे लिए काम करो, तुम अच्छी बातें कर लेते हो, तबलीग कर लेते हो, बातचीत का सलीका आता है, लो ये महंगी जमीन ले लो और हमारे साथ आ जाओ। मगर शुएब ने जवाब दिया, वमा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन, जिस चीज से मैं तुम्हें रोक रहा हूं वही खुद करूं, हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। इन उरीदु इल्ला इस्लाह मस्ततअतु, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं इस्लाह की कोशिश करूंगा, न ये कि पूरी दुनिया को सुधार दूंगा, मगर मैं अपना फरीजा जरूर निभाऊंगा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, तौफीक देने वाला भी अल्लाह है।

0: وما أنت علينا بعزيز.
1: ये तो ऐसे लोग नहीं है कि तुम कहो लरजमनाक तो फौरन आकर बोले चलो बात कर लेते हैं, चलो गुफ्तगू कर लेते हैं, चलो समझौता कर लेते हैं. लव तुधिनु फयुधेनून वद्दु लव तुधिनु फयुधेनून. पैगंबर वो दरअसल ये चाहते हैं कि तुम नर्म पड़ जाओ, तुम झुक जाओ, उनकी बात मान लो. हरगिज वो चाहते हैं कि तुम आंखें बंद करके गुजर जाओ कि तुमने कुछ देखा ही नहीं, बस समझौता कर लो सब ठीक. लेकिन समझौता न करना, मजबूती से खड़े रहना. लिहाजा शुएब ने इक्तदार से कहा वया कौम अमलू अला मकानतकुम इन्नी आमिल. तुम अपनी जगह डटे रहो, मैं भी अपनी जगह डटा रहूंगा. सौफा तअलमूना मन यातीही अज़ाबुन युख्ज़ी वमन हुवा काज़िब वरतक़िबू इन्नी मअकुम रक़ीब. सब्र करो, तुम भी मुंतजर हो, हम भी मुंतजर हैं, देखते हैं अजाब किस पर नाजिल होता है. लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा हूँ. वया कौम अमलू अला मकानतकुम इन्नी आमिल. इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूँ, देखते हैं अंजाम क्या होता है.

0: जहां भी हम हैं, इक्तसादी करप्शन ऐसी चीज है कि अगर ये कल्चर बन जाए, आदत हो जाए, अगर ये सिस्टमैटिक हो जाए, अगर बैंक रिबा लेने लगे और ये फिर ये सिस्टम में सरायत कर जाए, तो फिर अल्लाह उस कौम को नीस्तो नाबूद कर देता है, अल्लाह उस कौम को बर्बाद कर देता है। सलावात।
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ

शाह के वफादार रजाकार हुसैन, फातिमा बिन्त पयंबर के नमककार हुसैन, करबला वालों से अब्बास के हुबदारों से मत उलझना कभी सरवर के यजादारों से, हम अली वाले कयामत की नजर रखते हैं, कौन किस बाप का नुतफा है खबर रखते हैं। चलो

0: आज हम सब जगह देखते हैं
1: AI.
0: तो ये AI है क्या?
2: अभी तक हम कंप्यूटर्स को समझते थे like a glorified calculator. हम एक इनपुट देते थे, आउटपुट आता था. But now these computers have started having the brain of their own.
3: Will AI replace human jobs?
0: कितने LLM हैं हमारे पास जो हमको day to day life में use करने में help कर सकते?
2: हमारे पास 600 से ज़्यादा LLM हैं. अब कौन से के लिए आप कौन सा use करोगे?
0: Mostly सबके दिमाग में Chat GPT ही आता है.
2: If you just go to this website, we can see the rankings. कौन सा tool किस में best है? Instead of using one thing for everything, use the one who is best in that thing. Claude is by far hands on the best LLM in the world. Just go home guys, जो भी सुन रहे, and try using Claude once. So इसने मेरे लिए mail लिख दिया. मैंने इसको सिर्फ बोला एक mail लिख दे. Written a mail for me. Basic mail लिखा है. अब what if I use the boss framework? आपने वो 10,000 मजलिस अपलोड कर दिया और अब आपने
0: इतना डेटा वो ले सकता है.
2: चलो करके देखना है. Let's see.
0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सलामुन अलैकुम नाज़रीन. मैं हूँ सुकैना मर्चेंट और आप देख रहे हैं द AI पॉडकास्ट. आप सब लोगों ने सुना होगा AI, लेकिन ये AI क्या है? ChatGPT क्या है? Gemini क्या है? Claude क्या है? इस सब के बारे में हम आज जानने वाले हैं. आपको मैं बता दूं कि आयतुल्ला खामेनाई ने 5 साल पहले एक ट्वीट किया था, AI विल प्ले अ रोल इन मैनेजिंग द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड. हमें इसको सीरियसली लेना है और इसको कंसिडर भी करना है और हमें टॉप 10 कंट्रीज में आना है इन दिस फील्ड. आइए एक कदम आगे बढ़ाते हैं इस फील्ड में और मिलेंगे आज के एक्सपर्ट के साथ. आज जो हम एक्सपर्ट को मिलने वाले हैं, ही इज़ फ्रॉम मुंबई, ही इज़ एन बिजनेसमैन. वो एक IT इंजीनियर भी है और उन्होंने मास्टर्स किया है मार्केटिंग में. ही इज़ परस्यूइंग PhD इन मैनेजमेंट. ही इज़ अ नेशनल अवार्ड विनर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ही हैज़ वर्क विद अ कंपनी लाइक फेसबुक एंड मेटा. ही हैज़ वर्क विद द फेमस पर्सनैलिटी लाइक नवाज, मोदी सिंघानिया एंड वरुण तलवारकर. उनके प्रोजेक्ट पब्लिश हुए इंटरनेशनल मैगजीन में. ही हैज़ रिप्रेजेंट इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड इन मलेशिया. आइए मिलते हैं आज के AI एक्सपर्ट ब्रदर अली मेहदी हिमानी को. सलामुन अलैकुम ब्रदर.
2: वालेकुम सलाम. योर इंट्रोडक्शन वाज लिटरली एन ओवरस्टेटमेंट.
0: यू डिजर्व दैट. सो ब्रदर अली मेहदी हिमानी, आज हम सब जगह देखते हैं AI. तो ये AI है क्या?
2: बेसिकली टिल नाउ अभी तक हम कंप्यूटर्स को समझते थे लाइक अ ग्लोरीफाइड कैलकुलेटर. हम एक इनपुट देते थे, आउटपुट आता था. बट नाउ दीज कंप्यूटर्स हैव स्टार्टेड हैविंग द ब्रेन ऑफ देयर ओन. उनका खुद का दिमाग आ गया है. दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग, डिस्कसिंग विद अस एंड देन जनरेटिंग एन आउटपुट दैट वी एक्सपेक्ट एक इंसान जनरेट करता है.
0: अच्छा.
2: लाइक आपका एक कोई इंटर्न होगा, आप एक इंटर्न को जिस तरह से समझाते हो एंड जो आउटपुट आपको मिलता है, तो इस तरह का आउटपुट कंप्यूटर अब हमें देने लगा है.
0: आपका बोलने का मतलब है कि एक AI जो है वो एक इंसान की तरह अब काम करना शुरू कर दिया है.
2: यस ऑब्वियसली कर दिया है, रिप्लेस करना भी शुरू कर दिया है.
0: क्या बात कर रहे हैं आप. तो ये जो ChatGPT है, Gemini है, Claude है, ये क्या है? ये सब चीज़ें क्या है?
2: इन्हें बेसिकली टेक टर्म में बोलते हैं LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल. अब ये क्या करते हैं, इनके पास एक सेट ऑफ डेटा पे ट्रेंड है और वो उसके बेसिस पे आपको आउटपुट देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको लगता होगा ChatGPT के पास दुनिया भर की नॉलेज है. इट्स नॉट लाइक दैट. लेट्स गो एंड आस्क ChatGPT. अब मैं ChatGPT खोलता हूँ. आई आस्क ChatGPT टिल वॉट नॉलेज आर यू ट्रेंड ऑन, लाइक वॉट इज योर कट ऑफ नॉलेज. क्या लगता है आपको?
0: अगर वो
2: ChatGPT की नॉलेज इज ओनली गोज अप टिल August 2025, उसके बाद के लिए इट्स नॉट ट्रेंड अप टू एनी नॉलेज. उसको जाके वेब सर्च करके सीखना पड़ेगा. अगर आप उसको अभी रिलेटेड कुछ नया पूछोगे तो लाइक ईरान वॉर, तो उसको जाके पहले खुद सीखना पड़ेगा, फिर वो आपको समझा सकता है.
0: आज के बारे में कुछ पूछना है तो उसके पास वो नॉलेज नहीं है अंदर, वो अपने आप वेब जाके सर्च करके लेकिन हमको बता सकता है.
2: करेक्ट, बता सकता है. बट यू नीड इंटरनेट फॉर दैट. वैसे ही बहुत सारे, जैसे ईरान में नेट नहीं था, सो दे हैड एन AI इन ईरान विच वर्क्स ऑफलाइन. वो डेटा पे ट्रेन था. दे हैड देयर ओन ChatGPT विच वर्क्स ऑफलाइन. वेरी एस्टोनिशिंग, लाइक ईरान जैसी कंट्री ने खुद का एक LLM जो ऑफलाइन वर्क करता है. यू डोंट नीड इंटरनेट टू वर्क फॉर इट.
0: सो ये कितने LLM हैं हमारे पास जो हमको डे टू डे लाइफ में यूज करने में हेल्प कर सकते हैं?
2: व्हाट डू यू थिंक कितने LLM होंगे? हमने तो सिर्फ 5 का नाम सुना.
0: चार नाम सुना.

0: basically
1: Claude, ChatGPT, Gemini.
0: Mostly सबके दिमाग में ChatGPT ही आता है. So आप हमें बता सकते हैं कि और कौन से LLM हैं हमारे पास?
1: हमारे पास 600 से ज़्यादा LLM हैं.
0: हाँ
1: हाँ. आप कौन से के लिए आप कौन सा यूज़ करोगे? अब मैंने आपको 600 बता दिए. What do you think? आप तो सबके लिए किसको यूज़ करते हो?
0: सब नॉर्मली हम लोग ChatGPT ही यूज़ करते हैं, कुछ भी होता
1: है. But is ChatGPT best for all of it?
0: नहीं, मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं है तो.
1: So let's see, there's a website called LLM Arena. If you just go to this website, we can see the rankings. कौन सा टूल किस में बेस्ट है? फॉर एग्जाम्पल, लेफ्ट में वी कैन सी ओवरऑल बेस्ट कौन है. सी, एक चीज पहले आपको बता दूं, क्लॉड इज बाय फार हैंड्स ऑन द बेस्ट LLM इन द वर्ल्ड. क्यों बेस्ट है हम आगे देखेंगे. मोस्ट एक्सपेंसिव एंड दी बेस्ट. क्यों बेस्ट है मैं आपको आगे बताऊंगा.
0: सो आपने बोला कि ये एक्सपेंसिव है, लेकिन ChatGPT जितना मैंने यूज किया वो तो फ्री में यूज करते हैं हम.
1: हाँ, फ्री में, पर टिल अ सर्टन लिमिट. एक लिमिट के बाद इट विल आस्क यू टू पे, बट उसके लिए भी एंड में आई शो यू इन इंडियन जुगाड़, डोंट वरी. अब नाउ सी, लेट सी के कौन सा बेस्ट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मैथ करना है तो आई गो ऑन मैथ, आई विल सी सबसे बेस्ट LLM है इसके लिए ChatGPT. सेकेंड है क्लॉड, थर्ड है जेमिनी. इफ आई गो ऑन यू नो क्रिएटिव कोडिंग हार्ड प्रॉम्प्ट, अगर मेरा कुछ ऑक्यूपेशन है लाइक सॉफ्टवेयर लिटरेचर फिजिकल एंटरटेनमेंट बिजनेस मैथमेटिकल लीगल, अगर मैं लॉयर हूँ, या मेडिसिन के लिए बेस्ट कौन सा है, आई क्लिक ऑन मेडिसिन एंड आई हैव DeepSeek. DeepSeek इज अ चाइनीज मॉडल, हमने कितने लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा उसका. इट्स ऑल्सो फ्री. सो इस तरह से आपका जो काम है, use the LLM for that and you'll see how good the output is. The output will be damn good.
0: So ये जो आपने वेबसाइट दिखाया है वहाँ हमको पता चल सकता है कि कौन सा LLM किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है.
1: Correct. Instead of using one thing for everything, use the one who is best in that thing. Like for example, I could have any host for this, but we chose the best host that is possible, right?
0: So ये अगर हमने जो सीखा इस पे से, ये ChatGPT जो है वो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज समझ सकता है कि या उसकी इसके लिए हमें कोई कोडिंग या जावा या स्क्रिप्ट कोई लैंग्वेज सीखना पड़ेगा कंप्यूटर की?
1: नहीं, दैट इज द थिंग, इट वर्क्स ऑन नेचुरल लैंग्वेज. आप जिस तरह से इंसान से बात करते हो वैसे ही आपको ChatGPT से बात करनी है, एंड इट विल प्रेडिक्ट एंड गिव यू द बेस्ट आउटपुट सो फार. एंड इसमें सबसे बेस्ट है क्लॉड. जस्ट गो होम गाइज, जो भी सुन रहे, एंड ट्राई यूजिंग क्लॉड वंस. एक बार ट्राई करो एंड यू विल सी द डिफरेंस.
0: तो आप हमें क्लॉड कैसा यूज करना है वो थोड़ा बता सकेंगे हमारे व्यूअर्स को?
1: क्लॉड इज सिमिलर टू ChatGPT. Claude.ai पे जाना है एंड दिस इज क्लॉड. इट वर्क्स सिमिलर टू ChatGPT. एनीथिंग यू आस्क इट विल गिव यू एन आंसर. जस्ट अ फैक्ट, यस्टरडे आई हैड मेट माय ब्रदर, ही वर्क्स इन JP Morgan. सो क्लॉड का एक नया मॉडल है जिसका नाम अभी तक आया नहीं है. एज यू कैन सी, क्लॉड के अंदर सिर्फ आया है ओपस हाइकू सोनेट, एंड ओपस इज द बाय फार द बेस्ट मॉडल. क्लॉड ने एक नया मॉडल रिलीज किया, उसका नाम था माइथॉस. वो मॉडल रिलीज करने से पहले उन्हें रोकना पड़ा बिकॉज इट वॉज ब्लडी सो गुड. इट वॉज द वर्ल्ड्स बेस्ट हैकर. इट कैन हैक इन टू एनी बैंकिंग एनी वल्नरेबिलिटी. सो उन्होंने कंपनीज बनाई, वो कंपनीज को ट्रायल करने दिया. माई ब्रदर वॉज वन ऑफ द कंपनीज हु गॉट दैट. सो ही टोल्ड लिटरली, अगर एक भी वल्नरेबिलिटी है सिस्टम के अंदर, इट कैन हैक इन टू इट वेरी इजिली. जैसे जिसने क्लॉड बनाया था उसने एक इन्वायरमेंट के अंदर क्लॉड को रखा, बोला आई एम गोइंग टू हैव अ कॉफी, लेट सी क्लॉड माइथॉस ये इन्वायरमेंट तोड़ के बाहर आ सकता है, और आने के बाद मुझे एक मेल करके मैं बाहर आ गया हूँ. जैसे वी फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अकाउंटिंग फर्म, आपके अकाउंटिंग फर्म में लैपटॉप्स जो आप आपके एम्प्लॉयज़ को देते हो उसमें बहुत चीज़ें डिसेबल होती है, लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम जीमेल, बहुत चीज़ें डिसेबल होती है. दे हैव टू यूज इट, गार्ड रेल्स रहते हैं. यहाँ पर भी गार्ड रेल्स थे, ईमेल वगैरह जा नहीं सकता था. क्लॉड माइथॉस लिटरली ब्रोक दैट इन्वायरमेंट, केम आउट ऑफ इट, सेंड द मेल टू द यूजर हु वाज हैविंग ब्रेकफास्ट कि मैंने तोड़ दिया हूँ, और उसने ऑनलाइन जाके पोस्ट भी कर दिया मैंने किस तरह से ये तोड़ा हूँ. दैट वॉज क्लॉड माइथॉस. इट्स गोइंग टू बी पब्लिक वेरी सून. अभी बहुत कंपनीज के लिए आया ही है, एंड माई ब्रदर वॉज अमॉन्ग द फर्स्ट टू यूज दिस इन हिज कंपनी, एंड ही गेव मी द रिव्यू दैट इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट हैकर. साइबर सिक्योरिटी का करियर का क्या होगा, आई डोंट नो.
0: सो AI के बेनिफिट के साथ उसके रिस्क भी है, आपका बोलने का मतलब है?
1: रिस्क भी बहुत है. फॉर एग्जाम्पल, दीज पीपल आर वेरी पब्लिक अबाउट इट. OpenAI, सारी कंपनीज बोल रही है हमको क्या करना है आगे जाके, हमको ह्यूमन से उसकी जो थिंकिंग करता है वो काम हमको लेना है कि यार थिंकिंग का काम हमको दे दे, बाकी काम तू कर. और इफ योर चाइल्ड, ठीक है अब्बास, इफ यू यूज दिस ChatGPT यू विल बी वेरी हैप्पी, यू शो योर रिलेटिव यार मेरा बेटा ChatGPT यूज कर रहा है. बट इज इट अ गुड थिंग? व्हाट डू यू थिंक?
0: फॉर सर्टेन अमाउंट इट इज गुड, लाइक इफ ही इज ChatGPT इज हेल्पिंग हिम.
1: बट सोचो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए, होमवर्क्स के लिए अगर बच्चा ChatGPT यूज करने लग गया, व्हाट विल हैपन टू हिज कॉग्निटिव स्किल्स? लिटरली दे विल स्टार्ट लूजिंग देयर थिंकिंग एबिलिटी. वो इतना डिपेंडेंट हो जाएंगे इन चीज़ों के ऊपर दैट दे विल एक्चुअली स्टॉप थिंकिंग. ChatGPT इज ऑलरेडी द वर्ल्ड बेस्ट कोडर, इट कैन राइट वर्ल्ड बेस्ट फिजिक्स सॉल्वर, इट द वर्ल्ड बेस्ट मैथमेटिशियन, इट कैन डू एवरीथिंग वर्ल्ड बेस्ट.
0: आप जैसा बता रहे हो कि चैट जीपीटी सब कर सकता है, और तो फिर पढ़ाई का क्या इसमें रोल रहेगा? बच्चे चैट जीपीटी पे जाके

0: सब कर सकते हैं।
1: लिटरली कर रहे हैं, कर सकते हैं नहीं, लिटरली स्कूल के प्रोजेक्ट्स, मैं आपको बताऊंगा, प्रेजेंटेशंस, लिटरली एवरीथिंग कैन बी कन्वर्टेड यूज। अच्छा, अभी उन लोगों ने लाया एक ऐसा टूल के प्लेजरिज्म कैच कर लेता है। स्कूल पीपल सेड के ओके, आप अगर एआई से लिखाओगे तो हम प्लेजरिज्म चेक आपका पकड़ लेंगे। तो चैट जीपीटी इज ऑल्सो वेरी इनसेन। क्या किसी ने चैट जीपीटी के अंदर जाके लेफ्ट में जो एक कस्टम जीपीटीज का सेक्शन है, ये आपने कभी ऑब्जर्व किया है? दिस लेफ्ट सेक्शन कस्टम जीपीटीज, ये मेरे सारे कस्टम जीपीटीज हैं। इफ़ यू गो इन एक्सप्लोर जीपीटी, यू विल गेट अ लॉट ऑफ जीपीटीज। यहाँ पे देयर इज अ जीपीटी कॉल्ड एज स्कॉलर जीपीटी, जो आपके लिए आपके बच्चे को एक स्कॉलर बना देगा, जो भी वो पूछ रहे उसका आंसर दे देगा। बट अब आप बोलोगे ये तो स्कूल वाले पकड़ लेते हैं, तो उसके नीचे चैट जीपीटी हैज अनदर जीपीटी, एआई ह्यूमनाइजर जीपीटी। ये आपके कंटेंट को आप उसको दोगे एआई जनरेटेड, ये उसको ह्यूमनाइज करके दे देगा, मतलब जानबूझ के बीच में थोड़ी मिस्टेक्स डाल देगा, जैसे एक इंसान डालता
0: है, जैसे बच्चा एक मिस्टेक करता है नॉर्मली।
1: क्योंकि चैट जीपीटी को पता है जो सॉफ्टवेयर यूज करता है पकड़ने के लिए वो भी तो एक एआई ही है। सो इट्स एक्चुअली ट्रिकिंग इट्स ओन सेल्फ टू क्रिएट अ ह्यूमनाइज कॉन्टेंट के नहीं पकड़ सके, इट्स प्लेजरिज्म या एक रिया है। लाइक दिस इज वेरी क्रेजी। आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग के स्टूडेंट्स विल नाउ स्टॉप मेकिंग प्रोजेक्ट्स, stop making doing homework, they'll just use chat gpt. so we need to limit the use of chat gpt for students.
0: but aajkal schoolon mein bhi compulsory hone laga hai ai ka knowledge hona, iske bare mein aap kya kahenge?
1: ai is literally very important because the future is going to be ai. hum ye podcast se like in the end we will completely change the mind of the users. ai kis kin cheezon ke liye use hota hai, aapko lag raha hai ai is only chat gpt, but no, ai is much much bigger than that. you can literally do, the only limit is your imagination. aap socho and ai can create that website, that app, their business. literally Sam Altman said 1% billion dollar company is no far, and we got a 1% billion dollar company last month. ek aadmi sare ai agents kaam kar rahe hai, it was a 1% billion dollar company.
0: to jaisa humne suna ki wo bachche log ka bhi kaam kar sakta hai, to waise business aur job opportunities mein bhi affect karega AI.
1: Obviously, AI will change the way you do jobs.
0: क्योंकि जिस हिसाब से वो काम कर रहा है, इतना फास्ट कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स तो स्लो होते हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप?
1: सी माई फ्रेंड, ही हैड अ कॉलिंग कंपनी, वो कॉल्स करता था उसका प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। 30 लोग थे, कोई अच्छा था, कोई बुरा था, कोई एवरेज था। सैटरडे संडे ऑफ लेते थे, पेटर्नल लीव, पेटर्निटी लीव, मेटर्निटी लीव, सिक लीव, और सबकी कैपेसिटी कॉल करने की सेम नहीं थी। कोई ज़्यादा लीड्स लाता था, कोई कम लाता था। सो देयर इज अ टूल known as actually वापी, ये थोड़ा एडवांस टूल है। इसके अंदर यू कैन गेट वॉइस एजेंट्स, दीज वॉइस एजेंट्स विल वर्क 24/7, और इनको सैलरी नहीं देनी है, ये लोग पर मिनट जितना कॉल करते हैं उतना चार्ज करते हैं, वेरी वेरी वेरी चीप। एंड आप इसको ट्रेन कर सकते हो, जैसे आपकी आवाज़ में जो बेस्ट एजेंट है आपका जो कॉल्स कर रहा है उसकी आवाज़ में आप इसको ट्रेन कर सकते हो। थोड़ा डेमो देखना है आपको?
0: जी।
1: डू यू हैव योर फोन विथ यू?
0: यस।
1: सो लेट्स गो ऑन अ वेबसाइट नोन एज, गाइज दिस इज फ्री, मैंने वापी एक पेड टूल है, इसके लिए मैं फ्री वेबसाइट पे जा रहा हूँ, टू ओमनीडिम, इसके ऊपर ये मुझे पूछ रहा है।
0: हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शंस रहते हैं।
1: करेक्ट, यू हैव एन ऑप्शन फॉर पेड एंड फ्री, तो आप यू कैन स्टार्ट फॉर फ्री, एंड इफ यू स्टार्ट गेनिंग मनी, इफ यू स्टार्ट अर्निंग, देन शिफ्ट टू द पेड प्लेटफॉर्म। सो दिस इज ओमनीडिम, मुझे वॉइस एजेंट बनाना है, ठीक है? जस्ट सिंपल क्रिएट अ वॉइस एजेंट, जस्ट सी, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वॉइस एजेंट दैट विल कॉल टू द viewers of Win TV and ask them how was the AI podcast with Ali Mehdi Hemani, please rate it out of 5 stars. maine kiya create voice assistant is getting created, so it will take a minute or two to create a voice assistant, then I can just say your agent is ready, I can put your number, what is your number?
0: 9870.
1: Guys, don't call on this number अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो। So see, you can just keep the phone near the mic.
0: Yes,
1: you got a call?
0: Yes,
1: I got a call. You can keep it on speaker so that the viewers also can listen to it.
2: Hello, I'm calling from Win TV. Am I speaking with the viewer of the AI podcast with Ali Mehdi Hemani?
0: Yes.
2: Thank you for confirming. We would love your feedback. How would you rate the AI podcast with Ali Mehdi Hemani out of 5 stars?
0: I'll give 5 stars.
2: Thank you so much for your 5-star rating. If you have any quick comments about the podcast, yeah,
1: you can disconnect.
2: I would love to hear
1: them. So it was so easy.
0: That's amazing.
1: It was so easy.
0: Just in a second, you did this.
1: Yes, this will work 24/7.

0: मैंने तो अभी इसको 1 मिनट में क्रिएट किया, थोड़ा और फाइन ट्यून करूंगा, आवाज की स्पीड बढ़ाऊंगा एंड थोड़े से उसमें लाइक व्हाट आई टॉक, अरे बाबा ऐसे वर्ड्स डालूंगा, इट विल साउंड लाइक मी,
1: कैन टॉक लाइक मी आल्सो, जैसा मेरा टोन है, जैसा मेरी
0: लैंग्वेज है. आई कैन बेट ऑन इट, आई कैन बेट ऑन इट योर हस्बैंड विल आल्सो नॉट बी एबल टू टेल द डिफरेंस इफ इट इज लिटरली यू और समबडी एल्स कॉलिंग. ये तो मैंने बस एक 5 मिनट में सेकंड में बनाया. These tools are free. You can just try and.
1: So, कितनी कंपनी का काम आसान हो जाएगा ऐसे टूल्स के साथ. So, obviously. फिर इंसान की जरूरत क्या रहेगी?
0: You know, विनोद खोसला एंड लॉट ऑफ पॉडकास्टर्स, वो लोग बोलते हैं फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो है वो लोग आगे एग्जिस्ट नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि अब तक वो लोग जीत किस बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मनी, देयर स्ट्रेंथ ऑफ पीपल. 2,000-3,000 लोग है, बट अब 100 लोग की कंपनी AI की हेल्प से 2,000-3,000 लोग की कंपनी की स्ट्रेंथ के जितना काम कर सकती है. जस्ट इमेजिन, I'll have this 30 people एक ऑफिस लेनी पड़ती है. मैं इसमें 100 एजेंट्स बना सकता हूँ दैट कैन कॉल 24/7 टू एनीबडी एंड सेल माय प्रोडक्ट फॉर 100 द कॉस्ट.
1: तो जैसा हमने अभी अभी चैट जीपीटी सुनने में आ रहा है रिसेंटली इन अ ईयर और समथिंग, आगा खामेनाई का ट्वीट 5 साल पहले था, तो क्या हम लेट है इस बारे में सीखने में AI?
0: यस, वन ऑफ माई फ्रेंड्स केम एंड शोड मी आयतुल्ला खामेनाई ने ट्वीट किया, ही वॉज अ नॉन शिया ऑब्वियसली नॉन मुस्लिम. उसने बोला कि आयतुल्ला खामेनाई ने ट्वीट किया 5 साल पहले कि AI इज गोइंग टू बी द फ्यूचर. तब तो चैट
1: जीपीटी था भी नहीं.
0: तब तो चैट जीपीटी नहीं था. हु इज दिस गाय? इनके बारे में तो हमें अभी पता चला. एंड जस्ट आई वेंट टू, एंड मुझे भी नहीं पता था, आई जस्ट वेंट टू दिस ट्वीट दैट आई एम शोइंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, कि आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि उस टाइम में आयतुल्ला खामेनाई ने बोला कि यू नीड टू लर्न AI एंड स्टिल आर कम्युनिटी इज सो वेरी मच बैकवर्ड इन लर्निंग AI. लिटरली 2026 इज द इजिएस्ट वे, इजिएस्ट ईयर to make hard money. I'll say it again, 2026 is the easiest way to make hard money.
1: So I wanted to ask you, is it a trend or it will be a long term shift? AI is a long term shift or a trend?
0: Actually koi bhi revolution aaya hai jab start mein, there are 3 kinds of people: opposers, builders and users. Sabse pehle jo log khatam hue, those are the opposers. And literally we are seeing, we open news every time. For example, aaj maine open kiya news, I saw, just see, I am showing on the screen. Main khali AI likh raha hu, a firing in MNCs ya koi bhi company. Every time you open news you can see har din AI fire, AI ki wajah se log fire kar rahe, top MNCs fire kar rahe. As you can see, Oracle ne 30,000 log ko fire kiya. See, Oracle firing 30,000 log ko Oracle ne fire kiya. Aur kyun fire kiya? They are so public about it. Just see, सुबह 6 बजे ईमेल आया एंड दे फायर 30,000 एम्प्लॉइज. वाई डिड दे फायर? जस्ट वी स्क्रोल डाउन एंड सी क्यों फायर किया. क्योंकि हम लोगों को रीजन्स, हम लोग जो है ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं? AI के अंदर. यू नो IT, आर यू यू नो स्टॉक मार्केट में पता है कुछ?
1: Yes.
0: इंडिया का जो IT इंडेक्स है दैट इज कॉल्ड निफ्टी IT, इट फेल अराउंड 20%, वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रैश इन निफ्टी IT इन February 2026.
1: So, आपका कहने का मतलब है ChatGPT हमारे को हेल्प भी करेगा, सेंसेक्स में भी हेल्प कर सकता है हमें.
0: Yes, but Nifty IT जो फेल हुआ था 20%, पूरे वर्ल्ड की IT मार्केट फेल हुई थी 8%, वर्ल्ड की $1 trillion वाज वाइप्ड आउट. Why? Because Claude ने, और एक सॉफ्टवेयर आया जिसका नाम था ओपन क्लॉ. हैव यू हर्ड ऑफ दिस सॉफ्टवेयर?
1: Yes, yes.
0: Yes. This software can literally, the AI that actually does things, then literally it can mimic human behavior and then it can replace your basic stuff. जो लोग data entry करते हैं, जो लोग basic काम करते हैं, it can literally replace those.
1: So इसका जो data हमारे पास आता है वो एकदम genuine होता है, उसको recheck करने की ज़रूरत होती है कि it is एकदम exact जो होता है?
0: See, इसके AI obviously needs a human in the loop. You cannot give everything to AI. You need a human in the loop के एक ऊपर से निगरानी रखे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर आयरन मैन, मार्वल फैंस देख रहे होंगे, ये आयरन मैन का जो सूट है, ही हैड जार्विस इनसाइड इट टू कंट्रोल एवरीथिंग. बट आयरन मैन टोनी स्टार्क हैड टू बी देयर टू गाइड जार्विस व्हाट टू डू, विच मिसाइल्स टू शूट, हाउ टू फ्लाई, कौन से थ्रस्टर्स यूज करने, क्या करना है. एंड यू नो विदाउट टोनी स्टार्क दैट आयरन मैन सूट इज जस्ट अ पीस ऑफ मेटल. So human has to be there. Human oversight is needed everywhere.
1: AI की वजह से जॉब जा रही है, तो AI की वजह से जॉब आ भी सकती है, आपका बोलने का मतलब है?
0: चलो देखते हैं. अगर मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, यू विल नॉट बिलीव मी, इसीलिए चैट जीपीटी से सर्च करते हैं, ठीक है? इफ आई टेल यू, यू विल नॉट बिलीव मी. लेट्स गो ऑन चैट जीपीटी, आस्क, इट्स ऑन माई स्क्रीन, वॉट आर द टॉप 5 IT कंपनीज इन इंडिया? क्या है आपके हिसाब से नाजरीन? यस, यू पीपल आर करेक्ट. TCS, इन्फोसिस, HCLTech, विप्रो, व्हेन आई वाज इन कॉलेज ये एक एक कंपनी आके

0: हजारों लोगों को हायर कर दी थी. माय डैड यूज्ड टू टेल मी कि बेटा अगर टीसीएस में जॉब लग गया योर फ्यूचर इज सेट.
1: एग्जैक्टली.
0: मेरा नहीं लगा था एंड शर्मा जी के बेटे का लग गया था. दैट वॉज द वर्स्ट पार्ट फॉर मी. सो लिटरली दीज वर कंसिडर्ड द सेफेस्ट जॉब्स. बट जब आज मैंने न्यूज खोला मैंने देखा कि टीसीएस ने एक दिन में लिटरली 30,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया अप्रैल 2026 में. लिटरली वाई, व्हाट डू यू थिंक वाई दे आर रिमूविंग. इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, द कंट्री ऑफ चीप लेबर. सोचो इंडिया के अंदर अगर इतने ले ऑफ्स हो रहे वर्ल्ड में क्या होगा. कमिंग बैक टू माई टॉपिक, इन टॉप 5 आईटी कंपनीज इन इंडिया, द जायंट्स ऑफ आईटी, लिटरली द क्रोकोडाइल्स, इन लोगों ने पिछले एक साल में पांचों कंपनीज ने मिला के कितने लोगों को हायर किया होगा.
1: लैक्स, मोर देन लैक्स.
0: लाइक अपने न्यूज में सुन रहे हैं आपने बोला फायरिंग हो रही है, 30,000 लोग चले गए, 12,000 चले गए. और मेरे फ्रेंड ने भी पूछा यार तू फायरिंग बता रहा है लेकिन हायरिंग भी तो हो रही होगी ना, वो भी तो बता.
1: एग्जैक्टली, एआई जैसे चाहिए.
0: तो कितने लोग हायर हुए रहेंगे पिछले एक साल में?
1: अप्रोक्स
0: लैक्स. करेक्ट
1: करेक्ट.
0: यू नो मैं जितने भी मेरे बूट कैंप्स या सब जगह मैं पूछता हूँ, मैं वहाँ पे चैलेंज देता हूँ, अगर ये नंबर किसी ने नजदीक भी सही बता दिया आई लिटरली गिव देम माई मैकबुक फॉर फ्री. बट कोई भी आज तक बता नहीं पाएगा ये, बिकॉज लेट मी मैं बताता हूँ, लोग यकीन नहीं करते. दैट्स वाई ओपन चैट जीपीटी एंड आई शो. मैंने फिर चैट जीपीटी को पूछा हाउ मच डिड द टॉप 5 आईटी कंपनीज डू अ नेट हायरिंग इन 2025 के दिसंबर 2025 तक कितने लोगों को हायर किया. एंड द अमाउंट इज
1: एंड ओनली 17
0: 17 लोग.
1: वेरी लेस, अनएक्सपेक्टेड.
0: टॉप 5 आईटी कंपनीज डिड अ नेट हायरिंग ऑफ ओनली 17 पीपल. जस्ट इमेजिन, क्यों ऐसा हो रहा है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाई इज इट सच हैपनिंग?
1: लोगों के पास एआई का नॉलेज नहीं है.
0: एआई का नॉलेज नहीं है, नहीं, दे एक्चुअली कंपनीज नो दैट वी कैन लेवरेज आवर लॉट ऑफ वर्क टू एआई, जिसके लिए हमें इंसान की जरूरत नहीं है जो 24/7 वर्क करता है.
1: जैसे आपने बताया कि ह्यूमन लूप में रह के ही एआई से काम करना है, तो ऐसी कौन सी फील्ड है जहां इंसान को अपने आप को अपग्रेड करना है एआई के अंदर?
0: एआई के रिलेटेड बहुत सारे जॉब पोस्टिंग्स,
1: जैसा कुछ जॉब जा रही है तो कुछ आ भी रही होगी, एआई की अपॉर्चुनिटीज मिलती होंगी लोगों को.
0: इफ यू कैन गो, इफ यू कैन सर्च ऑन गूगल, लाइक मैंने आज गूगल खोला एंड आई जस्ट सॉ कि एप्पल ने एक पोस्ट डाला है हायरिंग के लिए. एप्पल ने नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने भी डाला है. एवरीबडी हैज पुट वी नीड एन एआई ऑपरेशंस लीड या ओरिजिनल कंटेंट क्रिएशंस, एआई ऑपरेशंस मैनेजर, एआई ऑर्केस्ट्रेटर. लेकिन द मोस्ट सिंपल टर्म फॉर ऑल ऑफ दिस इज ओनली वन थिंग, यू नीड टू बी. गूगल ने पोस्ट किया, एप्पल ने पोस्ट किया, सारी कंपनीज ने पोस्ट की, एक और बंदे ने पोस्ट किया. आई वॉज वेरी मच लाइक इस बंदे ने पोस्ट किया. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गाय, नॉट डॉली चाय वाला, बिल गेट्स. यस, बिल गेट्स ने पोस्ट किया. क्या पोस्ट किया? कि वी आर हायरिंग एन एआई जनरलिस्ट. यू नो दिस इज द ट्रेंड, दिस इज द थिंग एवरीबडी इज हायरिंग, एआई जनरलिस्ट इज द फ्यूचर. यू नीड टू बी एन एआई जनरलिस्ट.
1: सो व्हाट इज एआई जनरलिस्ट?
0: एआई जनरलिस्ट इज द पर्सन who can solve problems using AI. Any problem I'll give you, your mind should go in that back-end search ke bhai main isko AI se kaise solve karu, main isko MCPs dalu, main iske andar you know connectors use karu, vibe coding use karu, can I use Claude, Lovable.
1: Can I have a question here? Yeah. MCPs aapne bataya, uske bare mein aap viewers ko batayenge kuch?
0: MCPs kya hota hai? It's Model Context Protocol. Chat GPT ko aap alag alag app se connect kar do. For example, main screen pe dikhata hu, jaise maine mere Chat GPT ko connect kiya hai with Canva, ग्रनोला, हेजेन, मेक माई ट्रिप, ट्रिप एडवाइजर. सो लिटरली अगर मुझे एक फ्लाइट बुक करनी है, मे बी फ्रॉम बॉम्बे टू गो क्रेजी, कहाँ पे जाना है आपको?
1: दुबई.
0: दुबई, सर्च मी फॉर फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दुबई फॉर मे बी डे आफ्टर टुमारो एंड वॉट इज द प्राइस, गिव मी द चीपेस्ट फ्लाइट फर्स्ट. लिटरली आई कैन यू नो ऑर्डर फूड, आई कैन बुक ओला, उबर, मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी.
1: तो अगर मुझे कुछ जोमेटो से फूड ऑर्डर करना है, मैं चैट जीपीटी को जाके बोलूं कि मुझे नूडल्स खाने का मन है या फ्राइड राइस खाने का मन है.
0: चलो ठीक है, देखते हैं
1: होटल दिल्ली दरबार. सो
0: चलो देखते हैं दिल्ली दरबार. यू आर, यू वांट टू ईट फ्राइड राइस, ठीक है, वी हैव 30,000 की फ्लाइट, वी कैन गो एंड बुक इट फ्रॉम हियर. बट नाउ थोड़ा सा अलग करते हैं, जैसे आपको भी मन हुआ फ्राइड राइस खाने का, लेट्स गो ऑन चैट जीपीटी, लेट्स क्लिक जोमेटो. मैं इसको बोलूंगा सी, मैंने यहाँ पे कनेक्टर्स के अंदर जोमैटो सिलेक्ट करना है, या नहीं करूंगा तो भी वो खुद से कर लेगा, इट्स सो इंटेलिजेंट. आई विल से ऑर्डर फॉर मी फ्राइड राइस, गिव मी द नियर बाय रेस्टोरेंट्स विच हैव फ्राइड राइस विच आर द बेस्ट रेटेड एंड आई वांट टू ऑर्डर फ्राइड राइस फॉर मी.
1: सो कैन आई वांटेड टू ऐड हलाल ऑप्शन? ही विल
0: एक्चुअली, ही नोज मी सो वेल दैट ही विल गिव मी हलाल ऑप्शंस, बट आई कैन से ऑल्सो दिल्ली दरबार से. अब मैं, आपने जैसा दिल्ली दरबार बोला, लेट्स सी. अब ये मुझे सारे रेस्टोरेंट्स देगा, फिर अपने इसको बोलते हैं दिल्ली दरबार से कर।

0: लेट्स सी करता है कि नहीं. ऑल्सो गाइज आई एम ऑल्सो दिस इज़ वेरी अनस्क्रिप्टेड. हम लोग ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी ट्राई कर रहे हैं. तो अगर कोई टूल फेल होता है आई विल बी लिटरली फॉलिंग फ्लैट ऑन माई फेस. सो आई एम सॉरी बिकॉज वी आर गोइंग वेरी अनस्क्रिप्टेड ऑन दिस. वी नेवर हैड डिस्कस कि इनको फ्राइड राइस खाना है. वी जस्ट सो ओके. सो आई फाउंड सम सॉलिड फ्राइड राइस ऑप्शन नियर. ओके मेरा एड्रेस ले लिया उसने ऑटोमेटिकली. चाइनीज एंड ग्रिल 25 मिनट एंड कूपन भी इसने ढूंढ लिया 140 रुपीज़ ऑफ. हरदीप पंजाब अच्छी जाए ये सबसे बेस्ट है. एंड इट्स टेलिंग रिकमेंडेड इज चाइनीज एंड ग्रिल बिकॉज बेस्ट रेटिंग एंड बेस्ट डिस्काउंट. सो वॉट आई से नो आई वॉन्ट यू टू ऑर्डर फॉर मी फ्राइड राइस फ्रॉम जाफर भाई दिल्ली दरबार. ऑर्डर इट ऑन माई पिरामल एड्रेस. सी मैंने इसको बोला कि फ्राइड राइस ऑर्डर कर लेकिन जाफर भाई दिल्ली दरबार से कर और मेरा जो घर है पिरामल का वहाँ पर ऑर्डर कर बिकॉज माई हाउस एड्रेस इज सेव्ड इनसाइड इट. सो आई हैव टू सेव एन एड्रेस.
1: सो आप जो दे रहे हो आप सिर्फ बात कर रहे हो, आप लिख के भी चैट जीपीटी को समझा नहीं रहे, तो ये कैसा हो रहा है?
0: क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप हाथ से लिखो जाके इतना सारा? आई डोंट हैव द टाइम एंड आई थिंक यू ऑल्सो डोंट हैव. सो देर इज अ टूल ए आई टूल फॉर दैट कॉल्ड एज विस्पर फ्लो. मैं स्क्रीन के ऊपर आ गया है. दिस टूल आपके कीबोर्ड के ये एंड्रॉयड में भी है, एप्पल में भी है, आई ओ एस में भी है और विंडोज में भी है. यू जस्ट हैव टू हैव अ हॉट की जो आपके यू नो कीबोर्ड के ऊपर कोई भी एक की दे दो एंड वेन यू टाइप दैट की इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट एंटायर जो आप बोल रहे हो उसको विन टेक्स्ट. बट आप बोल रहे हो कि तो यार दूसरे भी ऐप्स करते हैं, इसमें ए आई क्या है? What do you think इसमें ए आई क्या है?
1: No idea.
0: ए आई इसमें यह है कि फॉर एग्जाम्पल आई ओपन चैट जीपीटी, आई टेल सेट अ रिमाइंडर दैट आई हैव अ पॉडकास्ट टुमारो. नो नो सॉरी डे आफ्टर टुमारो. सी इसने डाल दिया डे आफ्टर टुमारो. इसने टुमारो डाला ही नहीं. नॉर्मल ऐप्स करते हैं वो सॉरी भी डालेंगे, डे आफ्टर टुमारो भी डालेंगे.
1: exactly, yes.
0: ये समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ. एक और एग्जाम्पल देखते हैं.
1: तो ये ह्यूमन माइंड को भी समझ रहा है आपका बोलने का मतलब?
0: करेक्ट, ये समझ रहा है और इतना फास्ट है. इट इज लाइक दिस जीरो लैग. ऑल्सो आई हैव द थिंग्स टू डू आफ्टर द ए आई पॉडकास्ट. नंबर वन गो होम, नंबर टू प्रे नमाज, नंबर थ्री हेल्प माई वाइफ, नंबर फोर स्लीप. सी उसने 1 2 3 4 दे दिया.
1: सो उसने ऑर्डर भी दे दिया अपने को.
0: ये टूल हर काम कर सकता है लेकिन वाइफ को खुश रखना. सी यू नो यू हैव वी हैव टू डू दैट. एंड नाउ वील गो अगेन टू जाफर भाई दिल्ली दरबार. जस्ट सी यू वॉन्ट जाफर भाई दिल्ली दरबार. इसने दे दिया 30 मिनट्स लगेंगे. कौन सा फ्राइड राइस चाहिए मुझे पूछ रही है. वेज फ्राइड राइस है, एग फ्राइड
1: राइस. जो भी ऑप्शंस अवेलेबल था वो भी उसने निकाल
0: दिया. करेक्ट. कौन सा खाना है आपको?
1: चिकन फ्राइड राइस.
0: आई विल से चिकन फ्राइड राइस. आई वॉन्ट टू ऑर्डर चिकन फ्राइड राइस. सो यू कैन गो अहेड एंड ऑर्डर चिकन फ्राइड राइस 1 प्लेट.
1: सो हाउ डू वी डू अ पेमेंट? इज इट सीओडी और
0: आई कैन यूज सीओडी, आई कैन यूज ऑनलाइन पेमेंट, आई कैन यूज एनीथिंग. रिसेंटली रेजर पे ने एजेंटिक पेमेंट्स निकाला. व्हाट इज एजेंटिक पेमेंट्स? एक अमाउंट के नीचे की पेमेंट्स ऑटोमेटिकली एआई एजेंट आपके लिए कर देगा, आपको करने की जरूरत नहीं है.
1: सो आप तो इतना आगे बढ़ रहे हैं कि हम तो अभी एआई में थे, अभी एआई एजेंट के बारे में बता रहे हैं. तो मैं उसके बारे में भी आपसे पूछूंगी कि एआई एजेंट क्या है, लेकिन पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं.
0: सी सो इट्स टोल्ड मी ओके रेडी टू प्लेस बट आपको पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना है. चलो मैं कहता हूँ पे यूजिंग यूपीआई. लेट सी सीओडी तो हो ही जाता है नॉर्मली. यूपीआई तो ये मुझे यूपीआई दे देगा कि आप पिन डाल दो एंड पेमेंट हो जाएगा आपका, या क्यूआर दे देगा. सो इट कैन लिटरली गो एंड डू द ऑर्डर, कार्ट में डाल देगा, पेमेंट कर देगा. सी एनीथिंग इट कैन डू फॉर मी. शेजवान फ्राइड राइस या यू नो एंड इट कैन जनरेट माई यूपीआई क्यूआर एज वेल. अब ये पूछ रहा है आपने चिकन फ्राइड राइस का, लेकिन चिकन में भी दो टाइप के, शेजवान एंड वाइट. सो सी इट इज एक्चुअली टॉकिंग विथ मी लाइक अ स्मार्ट ह्यूमन. सो आई कैन शेयर शेजवान बिकॉज आई लाइक शेजवान. सी ये बार बार कॉलिंग टूल आ रहा है. लिटरली चैट जीपीटी इज गोइंग एंड टॉकिंग विद इट. सी फास्टेस्ट वे. सो इसने मेरे लिए काम कर दिया. आई एम बेसिकली टेलिंग यू दिस कि इसने मेरे लिए काम कर दिया. इट हैज ऑर्डर्ड फॉर मी. नाउ लेट्स गो. आपने जो ट्रेडिंग के बारे में कहा, सी आई हैव गॉट टू क्लॉड. आई विल से टू क्लॉड गो एंड फेच माई ज़ेरोधा होल्डिंग्स एंड डू अ रिसर्च एनालिसिस ऑन इट लाइक हर्षद मेहता और मे बी राकेश झुंझुनवाला एंड देन गिव मी यू नो रिकमेंडेशन. शुड आई होल्ड इट, शुड आई बाई इट मोर और शुड आई सेल इट ऑफ? यू नो डू अ रिसर्च एनालिसिस थरली ऑन माई एंटायर पोर्टफोलियो एंड गिव मी द एनालिसिस. वॉट डू यू थिंक? टेलीग्राम पर छोटे मोटे ग्रुप को टिप्स देना बेटर है कि जिस ए आई के पास 100 साल का नॉलेज है, हर्षद मेहता, वॉरेन बुफे, राकेश झुंझुनवाला, उससे ट्रेडिंग कराना बेटर है. आई गुड हैव शोन यू अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स ऑल्सो ओवर ईयर ऑफ ट्रेडिंग वी आर डूइंग विद अ लॉट ऑफ, लेकिन इट्स सेबी डजंट अलाउ अस टू शो द रिजल्ट्स. सी इट हैज नाउ गॉन डीप डाइव एंड अब वो मेरा पूरा पोर्टफोलियो निकाला उसने एंड लिटरली इट विल कनेक्ट.
1: वी कैन रिलाई ऑन दिस.

0: इन्फॉर्मेशन?
1: यस, दिस इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन. तो वो एक ऑनलाइन एनालिस्ट लोग का रिसर्च लेता है 100 लोगों का, कंबाइन करता है, फिर अपना उसके ऊपर एक रीजनिंग करता है, फिर वो बताता है ओके ज्यादातर एनालिस्ट लोग ने ये कहा है, आपको ये करना चाहिए.
0: तो हमारा बहुत सारा काम आसान होता है, एक एक आर्टिकल जाके पढ़ना, एक एक रिसर्च करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड टायरिंग जॉब. सो चैट जीपीटी हमारे लिए तो दो पाँच मिनट में कर रहा है.
1: यू नो योर ब्रोकर हैज अ सीआरएम दैट चार्जेस यू अ लॉट फॉर दिस टाइप ऑफ रिसर्च, कि आप होल्ड करो, आप बेच दो, आप सेल करो.
0: इट इज टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो.
1: करेक्ट. सी ओके गाइज, आई एम इन लॉस ड्यू टू दिस ऑल द सिचुएशंस वर्ल्ड, यू नो ऐसा ही होता है. व्हेन आई गो इन टू इन्वेस्टमेंट्स तभी पूरा वर्ल्ड टर्मोइल में जाना है, एंड लिटरली हैपेंस विद मी. See, so I have 7 holdings.
0: आपके साथ नहीं, पूरे वर्ल्ड के साथ यही सिचुएशन है.
1: करेक्ट. माई पोर्टफोलियो वैल्यू इज 3 लाख, और इसमें लॉस क्या क्या है, एंड इसने मुझे दे दिया आप इसको और बाई करो, इसको सेल करो, इसको होल्ड करो, और क्यों होल्ड करो, बाई करो, वो भी रीजन दिया है. सी इट्स टेलिंग कि निवा बुपा को थोड़ा सेल करो. गाइज डोंट रिलाई ऑन दिस, यू टेक योर ओन, डू योर एनालिसिस, एंड लिटरली सी मुझे ये रिस्क एनालिसिस कर रहा है, एंड इट्स टेलिंग मी एवरी थिंग. और क्या बोल रहा है, आपके अंदर कोई फार्मा का स्टॉक नहीं है, FMCG का नहीं है, ये स्टॉक्स लो. It's literally talking with me like a 10 years experienced research analyst.
0: Exactly. हम लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत रिसर्च लगता है, लेकिन ये तो उसने 5 मिनट में भी, less than 5 minutes में करके दिखा दिया.
1: Talking about Claude, मैं Claude ChatGPT बोल रहा हूँ. Let's go another LLM, जिसका नाम है Grok. आपको पता है Grok किसका है?
0: Google?
1: No. कार वाले भैया कौन है?
0: Elon Musk.
1: Elon Musk. So Elon Musk actually owns Twitter, now called X. Grok is created by Elon Musk. तो एक ही LLM है जिसके पास Twitter का पूरा डेटा है. कौन?
0: Elon Musk.
1: एंड उसका LLM है Grok. तो कोई भी स्टॉक मार्केट पे जब स्टॉक आता है, उसका IPO आता है, या कोई भी कंपनी आप लॉन्च कर रहे हो, ज़्यादातर अगर कंप्लेंट्स रहती है, गुस्सा रहता है, कहाँ उतारते जाके लोग? Twitter के ऊपर. तो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम Lenskart का IPO आ रहा है, I'll say Grok, go on, you know, Grok के Twitter पे जाए, रिसर्च एनालिसिस कर, पब्लिक का सेंटीमेंट क्या है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, एंड डू अ थरो एनालिसिस. मैंने नया शूज ब्रांड लॉन्च करना है, बाटा का कॉम्पिटिटर, सो आई गो एंड से बाटा, पुमा, नाइकी, सारे ब्रांड्स पे रिसर्च कर और बता कि उनको ज्यादा कंप्लेंट्स पिछले 100 साल में क्या आई है, तो मैं उसको इम्प्रूव करूँ. कंप्लेंट्स कहाँ डालते हैं लोग? ट्विटर के ऊपर. सारी कंप्लेंट्स ट्विटर के ऊपर रहती है. सो दिस इज हाउ आई कैन गेट एक्सेस टू ऑल ऑफ द डेटा दैट वॉज नॉट एबल, आई कुड हैव एक्सेस टू इट. एक बंदे को मैं बिठाऊंगा 10 साल का डेटा एनालाइज करने, कितना टाइम लगेगा?
0: महीने निकल जाएंगे.
1: एंड आई कैन डू इट विद इन मिनट्स.
0: It's very helpful in today's life.
1: Literally, एक दो MCPs का और example देता हूँ आपको, you'll literally be mind blown. So, see, I have TripAdvisor in my this thing. ठीक है? I'll say to, अच्छा, आपको लग रहा है developer mode क्यों आना है? Developer mode इसके लिए आना है क्योंकि ये चीज़ की मुझे memory मेरे chat में नहीं रखनी है. I can just go to settings and turn off developer mode as well. Nothing big. मैं turn off कर देता हूँ. आपको लोगों को लगेगा, bro, ये developer mode है, coding है, no. So, I'll just ask, I want to go to Ahmedabad. Can you suggest me the best hotels in Ahmedabad near the area of Juapura? The hotels should cost less than 5,000 rupees.
0: ChatGPT travel agency ke business ko bhi hit kar sakta hai.
1: Correct. I'm sorry to all the travel agents out there. This can literally go and book flights. Ab ye research, ye analyze kar raha hai kaun se best hotels hai Juapura ke nazdik, 5-star rated and ratings achhi hai and jo 5,000 se kam hai. So literally event and bought me 5 hotels jo best hai. Aaj ye kahan se connect hua? It connected via a MCP to my TripAdvisor. Aur see, isne mere liye 5 hotels nikal diya. How easy was that? And I can just go ahead and book. Your budget is 5K. To ye bol raha hai 2,000-2,500 mein hi achhi hotel mil jati hai. Aapko 5K bhi spend karne ki zarurat nahi hai. Literally so. Just see,
0: it's life has become so easy, and we are becoming more independent now.
1: Now you go in Canva to design a presentation, right? Canva chalu karte hai sab, and you design a presentation, mehnat karte. What if I tell you something, students? This is for you guys. Just go on ChatGPT. Aapko kis cheez ke upar presentation banana hai? Okay, I have a random topic idea. You were telling travel agents ka jaane wala job, theek hai? Wo log kya prepare karte apne liye? Itinerary prepare करते हैं कहीं पे जाने की.
0: Itinerary
1: जो भी है, like my English is not so good, I'm sorry. चलो, let's go. I'll ask ChatGPT. See, it's calling me Ali Bhai. It knows कि मुझे अली भाई बोलते तो अच्छा लगता है. So it's calling me Ali Bhai. Let's see. It's ask. I'll say to it. Wear the hat of a 10 years old experienced travel agent and design for me an itinerary that I want to go to. Which country do you want to go to? What is your bucket list? कि यार यहाँ पे तो जाना ही है मुझे.
0: Switzerland.
1: Yeah. Now prepare for me a complete 10-day itinerary for Switzerland for me, and it should have a lot of. I'm going with a family, so it should have a lot of experiences for my kids, फॉर फैमिली बेस्ड एंड इट्स विल बी गुड. सो डिजाइन फॉर मी एन अमेजिंग आइशनरी फॉर 10 डेज फॉर स्विट्जरलैंड. आई एम गोइंग फ्रॉम मुंबई.

0: सो मैंने इसको दे दिया प्रॉम्प्ट के यू नो 10 days आयुष ने दे
1: सो
0: दिया था.
1: यस, प्रॉम्प्ट से मुझे याद आया कि एक चैट जीपीटी, हमको उसको राइट प्रॉम्प्ट देना ज़रूरी होता है. तो वो एक प्रॉम्प्ट कैसे राइट देना, उसके लिए भी कोई टेक्निक है हमारे पास?
0: सी द चैट जीपीटी के सारे एलएलएम्स हैं, द आउटपुट इज जस्ट गुड एज द इनपुट. आप जैसा इनपुट दोगे उतना ही अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा. इफ़ योर इनपुट इज शिटी, योर आउटपुट विल बी शिटी. सो योर इनपुट शुड बी वेरी गुड. अब इसके लिए मैंने अपना खुद का एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसका नाम है बॉस फ्रेमवर्क. डू यू वॉन्ट टू गाइज वॉन्ट टू सी दैट फ्रेमवर्क? गाइज डू यू वॉन्ट टू सी दैट?
1: यस.
0: सो आई शो यू दैट फ्रेमवर्क. सी स्क्रीन के ऊपर है बॉस फ्रेमवर्क. यू विल बी लाइक क्या होता है बॉस? बॉस का मतलब होता है बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड स्टाइल. मैं क्या कह रहा हूँ, जस्ट सी, आई एम गोइंग ऑन चैट जीपीटी एंड आई विल से आई वांट टू राइट अ मेल टू 1000 स्टूडेंट्स टू इनवाइट देम टू माय 2 डे एआई बूट कैंप.
1: तो एक साथ 1000 लोगों को मेल कर सकता है, इतनी है इसमें कैपेसिटी?
0: तो आगे देखते हैं अपने. व्हाट डू यू थिंक गाइस, है कि नहीं है? योर माइंड इज अबाउट टू बी
1: ब्लोन.
0: मतलब
1: कब हम एक साथ 100 मैसेज देते तो इतने ग्लिचेस आने लगते हैं. लाइक अगर व्हाट्सएप पे भी ऐसा देख रहे हैं कि ब्रॉडकास्ट भी जा रहा है तो ग्लिचेस आने लगते हैं. तो एक साथ 1000 लोगों को कर सकेंगे हम?
0: ऑब्वियसली कर सकेंगे, क्यों नहीं, देखते हैं अपने करके. सो सी, मैंने 2 डे AI बूट कैंप के लिए बोला इसको. सो इसने दे दिया, आई एम होस्टिंग अ 2 डे. इसमें आप चैट जीपीटी सीखेंगे, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करेंगे, मजा आएंगी, आ जाओ. और ये इसका पेमेंट है.
1: तो ये 1000 पीपल का हमारे पास डेटा है तो उसको देंगे उसका ईमेल एड्रेस तो वो खुद से कर सकता
0: है? यस, यू जस्ट अपलोड द PDF, एक्सेल शीट, टेक्स्ट, एनीथिंग, इट विल ऑटोमेटिकली सेंड अ मेल टू 1000 पीपल ऑन योर बिहाफ.
1: मेल लिखना एक टायरिंग जॉब होता है लेकिन इसकी वजह से एकदम इजी हो रहा है.
0: मेल लिखना छोड़ो, मेल आप भेज भी सकते हो. और जब आपको अगर रिप्लाई में मेल आएगा वो उसका रिप्लाई भी ड्राफ्ट करके वापस भेज देगा. Literally, I have an agent set up on my Telegram or WhatsApp. If you message me, it will literally mimic my writing and reply to you.
1: मतलब in your way, in your tone they will.
0: In my tone, जैसे मैं बहुत use करता हूँ, अरे बाबा, बाबा बहुत use करता हूँ. So it will literally use बाबा in my every sentence. Literally.
1: तो उसको पता नहीं चलेगा ये अली मेहदी है कि AI है.
0: Correct. So you know you messaged me the other day before yesterday I think, and आपसे तो बात कर रहा था 10 minutes. That was AI. That was not me. Did you notice that? Why? Because it mimicked my word, बाबा. अरे बाबा मैं यहाँ जा रहा हूँ. अरे ये मतलब लिटरली इट ट्रेन्स ऑन माय राइटिंग एंड देन इट मिमिक्स मी. सो इसने मेरे लिए मेल लिख दिया. मैंने इसको सिर्फ बोला एक मेल लिख दे. इट हैज रिटन अ मेल फॉर मी. बेसिक मेल लिखा है. अब व्हाट इफ आई यूज द बॉस फ्रेमवर्क? लेट्स सी आई एम यूजिंग द बॉस फ्रेमवर्क. बॉस फ्रेमवर्क क्या बोलता है? लेट अस गो. इट सेज बिहेवियर. पहले इसको बिहेवियर बताना है. सो आई विल से यू आर एन एक्सपर्ट ईमेल क्राफ्टिंग 10 years ओल्ड एक्सपीरियंस गाय. You write emails for firms like McKinsey and JP Morgan. High converting emails that the person who reads it has to register for the event. मैंने इसको behavior दिया. तेरे पास एक 10 साल का experience का
1: है. तो आप उसको prompt दे रहे हैं, correct?
0: Correct, prompt दे रहा हूँ. अब second क्या है? Second is objective. अब मैं इसको objective दूंगा. Your objective is to get me 1000 students for my AI bootcamp that is happening this weekend for 2 days. मैंने इसको ऑब्जेक्टिव दिया, तुझे ये करना है. अब स्कोप, स्कोप क्या है?
1: ये आप सब जो कमांड दे रहे हो विस्पर फ्लो से ही दे रहे हो?
0: करेक्ट. मैं एक बटन दबा रहा हूँ, विस्पर फ्लो ये कमांड दे रहा है. आई से योर स्कोप इज दैट द स्टूडेंट्स कमिंग हियर आर जनरली फ्रीलांसर्स और स्टूडेंट्स. सो यू नो यू हैव टू टॉक इन VR लैंग्वेज दैट दीज पीपल अंडरस्टैंड, मे बी इन Gen Z स्लैंग. फिर लास्ट में क्या आता है? वी हैव अगेन स्टाइल. सो स्टाइल क्या बोलूंगा इसको मैं? क्या स्टाइल अच्छी लगती है? चलो इंडियन स्टाइल करते हैं. Talk in an Indian style as the audience is mostly Indian, have some cultural references, Bollywood references, cricket references and Desi parents references. You can have a Hindi also in it, but yes, the output should be in English and the person who reads it should have a smile on their face. See, ab dekhte hai iska output kaisa rehta hai. And just now you be place ke ab wo email log padhenge zyada ke ye padhenge. See, bro, AI is not optional anymore. Hey, let me ask you something. Right now you are still doing assignments, still pending hours on work that can be done in minutes, still thinking AI to hype hai. Because reality check, the guy sitting next to you is already using AI and moving 10x faster. This is not a koi mil gaya moment where jadoo comes later. This is like Three Idiots. Rancho already figured it out. Others are still catching up. And this weekend I am doing something crazy. I am doing the 2-day AI bootcamp. Use tools like ChatGPT, all of this. Think of it like having your own AI assistant, like Dhoni level काम, but with ChatGPT level power.
1: So आपका काम एकदम आसान कर दिया इसने.
0: And इसने

0: पेरेंट्स के रेफरेंसेस भी डाला, योर पेरेंट्स वॉन्ट से डायरेक्टली बट दे आर थिंकिंग ये फोन पे क्या करता है पूरा दिन. आफ्टर दिस बूट कैम्प यू विल हैव एन आंसर. ए आई सीख रहा हूँ, सी हाउ क्रेजी दिस इज. वॉट डू यू थिंक पीपल विल रीड दिस मोर और दैट मोर?
1: दिस ऑब्वियसली.
0: व्हाई? बिकॉज इट आई टॉक in a way that it understood me better.
1: So it doesn't feel boring or मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि monotonous है.
0: Correct. पता है ये जो prompting technique है, I was doing a lot of research on prompt engineering. It's one of the leading careers. Yeah, context engineering.
1: तो उसमें भी एक field है जिसमें लोग माहिर हो सकते हैं.
0: Correct. People charge $1,000 to write 1-2 pages of prompts.
1: So इसमें भी job opportunities होगी लोगों के
0: पास. बहुत ज़्यादा है. Context engineering is the next big thing, guys. Context engineering आप research करो, it's the next big thing. Also मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ. आई वॉज रिसर्चिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. चैट जीपीटी से कैसे बात करते हैं, ये एक प्रॉम्प्ट है जो हम देते हैं. क्या कोई ऐसा है जिसने हमें हजार साल पहले सिखा के गया है कि खुदा से कैसे बात करते हैं? व्हाट डू यू थिंक?
1: इमाम अली ये सही पे सज्जा दिया वाला,
0: जैसे बुक सही पे सज्जा दिया.
1: खुदा से राज उन्नियाज करते थे बात,
0: खुदा से कैसे बात करते. यू नो आई लर्न हाउ टू टॉक विद गॉड यूजिंग दैट बुक. खुदा को बोलो कि तूने कहा है कि दरवाजे पे कोई आए तो उसे खाली हाथ नहीं भेजना. अब मैं तेरे दरवाजे पे आया हूँ, क्या तू मुझे खाली हाथ भेजेगा? क्या तू अपनी ही कही बातों को नहीं मानेगा? लिटरली उस बुक में बताया गया कि खुदा से दुआ कैसे मांगना चाहिए. लाइक इट इज सो अमेजिंग, वी आर लर्निंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टॉकिंग विद एआई.
1: जो हमारे इमाम ने हमको सालों पहले सिखा
0: बता के गया है कि आपको खुदा से कैसे बात करनी है. खुदा को बोलना है कि ए खुदा, क्या किसी भी इंसान के पास कोई रास्ता है कि अपने मालिक के पास नहीं आए और कहाँ जाए? मैं तेरा गुलाम हूँ, क्या मैं तेरे पास नहीं आऊँगा?
1: तो आप अगर हम यहाँ पर आ ही चुके हैं तो मैं आपको पूछना चाहूँगी कि हमारा इस्लाम का नॉलेज भी इसके पास होगा? शिया हिस्ट्री होगी, शिया बिलीफ के हिसाब से उसके पास सब आंसर होगा चैट जीपीटी के पास?
0: व्हाट डू यू थिंक?
1: होना चाहिए,
0: ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली होना चाहिए. और अगर ऐसा कोई नॉलेज है जो आपको नहीं लगता है, यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टम जीपीटी. आप खुद का कस्टम जीपीटी बना सकते हो. सीखना है कैसे बनाते. बट बिफोर दैट हमने एक चीज छोड़ के रखी थी आदि.
1: तो मुझे ऐसा है कि फॉर एक एग्जाम्पल, एक टॉपिक है इस्लामिक टॉपिक, उसके मुझे हर आलिम की उसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और क्या कौन सी बुक में किसके बारे में क्या बताया गया है वो जानना है, तो चैट जीपीटी सब मेरे को डेटा निकाल के दे सकता है?
0: करेक्ट. यू नो एक आपको यूज केस बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू रिसाइट अ मजलिस ऑन फोर्थ इमाम. आपके पास 1000 मजलिस का कलेक्शन है ऑफ मौलाना सादिक हसन. आपने वो 10,000 मजलिस अपलोड कर दिया और अब आपने
1: इतना डेटा वो ले सकता है?
0: चलो करके देखना है, लेट्स सी. देयर इज अ टूल नोन एज notebook.lm. मैंने notebook.lm पे गया और यहाँ पे आप इसको कुछ भी डेटा दे सकते हो. फॉर एग्जांपल, मैंने आज के लिए इसको दिया था नहजुल बलागा. मैंने सिर्फ एक पीडीएफ अपलोड किया, ठीक है? अब नहजुल बलागा के ऊपर इसने पूरा रिसर्च किया.
1: ये LM फ्री है, notebook.lm?
0: एवरी टूल आई एम शोइंग गाइस टू यू टुडे इज फॉर फ्री, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग. सो मैंने नहजुल बलागा डाल दिया, ये पूरी नेजुल बलागा आ गई. इफ़ आई वॉन्ट टू जस्ट चैट विद नेजुल बलागा, बात करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे बात कर सकता हूँ. जस्ट सी, नीचे टाइपिंग का ऑप्शन आई से. व्हाट डिड इमाम अली से इन द नेजुल बलागा अबाउट ट्रीटिंग नॉन मुस्लिम्स? लिटरली इफ आई फील लो,
1: तो वो एक जो भी उनके बारे में वो डिटेल एक्सट्रैक्ट करके हमें बता दे.
0: करेक्ट. इफ आई फील लो, इफ आई एम फीलिंग एंग्री, आई टेल notebook.lm कि मैं एंग्री फील कर रहा हूँ. नेजुल बलागा से मुझे पता क्या करना चाहिए. सही फे सज्जादिया से मुझे पता कि मुझे क्या करना चाहिए. Literally people should be using this a lot.
1: So हमको लिखना भी नहीं है, सिर्फ बताना है. जैसा हम एक दोस्त से बात करते हैं, वो आपका दोस्त बन सकता है.
0: Correct. See, what did Imam Ali say about non-Muslims? उसने पूरा दे दिया. क्या बोला इमाम अली ने? Respecting human dignity. People fall into two categories. या तो वो आपके brother in faith है, या तो brother in humanity है. And non-Muslims are your brother in humanity. They do not deserve to be driven from us and do not deserve to be treated harshly. They have their rights, freedom rights. Christians should not be overtaxed or humiliated. Unko respect do. Equality is always before the law.
1: So हमारे पास knowledge तो सब है, लेकिन हमको कुछ एक particular field में चाहिए, तो हम LM से पूछ के वो details हासिल कर सकते हैं.
0: थोड़ा और crazy जाना है guys, notebook.lm. थोड़ा crazy देखना है क्या हो सकता है. notebook.lm में मैं जाके नहजुल बलागा का पूरा mind map बना सकता हूँ. Literally नहजुल बलागा इसने चार parts में deliver कर दिया कि significance and context, themes, इमाम अली's character और political struggles. I want to go into politics now. Now I go over here.
1: उसमें भी options हैं हमारे.
0: उसमें भी options हैं. Caliphate succession, main battles, arbitration and prophecies. I'll go into arbitration. Forced Imam Ali, if wants Siffin, result, consequences. लिटरली मैं क्लिक करके वो चीज के ऊपर नॉलेज जो मुझे चाहिए अंदर स्प्लिट करके देख सकता हूँ. बट दिस इज ऑल्सो बेसिक,
1: रीड करने की जरूरत नहीं, हमको एक पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए तो हमको मिल सकता है.
0: करेक्ट, बट दिस इज ऑल्सो बेसिक. थोड़ा और

0: क्रेजी जाते गाइज, लेट्स गो एंड सी फ्लैश कार्ड्स. तो बच्चे लोगों को हम एक नेजुबरा का पढ़ा दिए, बट वी नीड क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम इट, करेक्ट?
1: करेक्ट.
0: सो ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए फ्लैश कार्ड्स बना के दे देगा एंड इट्स सो ब्लडी गुड एट डूइंग इट. सी व्हाट इज तकवा डिस्क्राइब्ड एट नेजुल बलागा. मैं क्लिक करूंगा आंसर, आई विल गो नेक्स्ट. हाउ डज नेजुल बलागा डिफरेंशिएट इस्लामिक जुद फ्रॉम क्रिश्चियन मोनास्टिज्म. माय इंग्लिश इज बैड, आई टोल्ड यू ऑलरेडी. इस्लामिक जुद इज अ स्टेट ऑफ मटीरियल वाइल इस्लाम अपोजेज एंड इज रिलीजन ऑफ. फिर मैं नेक्स्ट करूंगा, ये भी बेसिक है. चलो एक एक क्वेश्चन आ रहा है,
1: मुझे क्विज भी दिख रहा है तो वो क्विज भी बना सकते हैं, इसमें से क्वेश्चंस भी कर सकते हैं.
0: सी सो इट्स ने कंप्लीटली नेजुल बलागा से चार ऑप्शन की क्विज बना दी. अकॉर्डिंग टू द सोर्स व्हाट इज द सिग्निफिकेंट एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेजुल बलागा इज कंपेयर्ड टू अदर लिटरेचर मास्टरपीसेस. चारों ऑप्शन आ गए, सो आई कैन सिलेक्ट एनी ऑप्शन. सी ओ माय गॉड इट्स राइट. सी
1: सो इट विल हाईलाइट द राइट ऑप्शन.
0: यस नेक्स्ट, चार ऑप्शन आ गए. मालिक अश्तर में इमाम अली ने लेटर 53 में निजाम मालिक अश्तर को क्या कहा था. द फर्स्ट इट्स रॉन्ग, फोर्थ सी इज द राइट वन. सो आई कैन जस्ट हैव अ क्विज ऑल्सो, आई डोंट नीड टू लाइक जस्ट इमेजिन इन आर मदरसाज हाउ फार दिस कैन बी यूज्ड. जस्ट इमेजिन, मैंने तो एक नेजुल बलागा अपलोड की, यू कैन लिटरली अपलोड 10 फाइल्स, 1000 फाइल्स टुगेदर.
1: हम सब बुक इसमें अपलोड कर सकते हैं, हमारे को जो भी चाहिए इसमें से इन्फॉर्मेशन डेटा मिल सकता है.
0: करेक्ट. अभी मैं इसको फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको क्विज भी बता दिया, और इसके अंदर अगर हमें चाहिए मे बी एक, लेट्स सी, एक प्रेजेंट करना है मुझे क्लास के अंदर अबाउट नेजुल बलागा. दिस प्रेजेंटेशन इज क्रिएटेड बाय AI. सी द पीक ऑफ एलिक्वेंस नेजुल बलागा. नाउ जस्ट सी हाउ गुड इट इज एट द माइन्यूट डिटेल्स. सी इमाम अली ने क्या कहा, इसने सारे ग्राफिक्स मोशंस खुद से बनाए. इमाम अली ने एक एक खुतबे में क्या क्या कहा. इमाम अली ने कुछ कहा था अबाउट एंट, सी इसने एंट लेके आ गया. इमाम अली ने थ्री स्टेप्स ऑफ बताए,
1: पिक्चर्स भी अपने हिसाब से डाल दिए,
0: अपने हिसाब से डाल दिए. इमाम अली ने इस्लामिक जूद जो अभी क्वेश्चन आया था मोनास्टिसिज्म एंड इसमें क्या फर्क है. सी सी द डिटेल्स द रूल्स एंड द सब्जेक्ट,
1: इट्स वेरी प्रेजेंटेबल.
0: इट्स वेरी प्रेजेंटेबल. इमाम अली ने जस्टिस के बारे में क्या कहा, तो इसने तराजू लेके आ गया. सी एक एक चीज इसने बता दी. एंड नाउ आई कैन गो ऑन फॉर एवर. अब थोड़े लोग हैं यार, हमको वीडियो देखना है, हमको इसमें समझ में नहीं आता है, व्हाई नॉट हैव अ वीडियो ऑफ योर ओन. सो ये आपको एक वीडियो लेसन भी बना के दे देगा जिसमें आप वीडियो की हेल्प से जाके भी सीख सकते हो. सी दिस इज द वीडियो इट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट खुतबा, इसे आप सबके लिए बना सकते हो. सी
2: ऑलराइट, टुडे वी आर डाइविंग इनटू अ मास्टरपीस ऑफ लिटरेचर एंड थॉट, वन दैट इज एब्सोल्युटली कैप्टिवेटेड माइंड्स फॉर वेल ओवर अ थाउजेंड. एंड व्हाट्स सो फैसिनेटिंग is how its appeal to stretches way beyond its original context. I mean, think of gathering all of his most powerful and eloquent statement.
0: Literally, it can pull out the animation. It can say Imam Ali is the hero in all the fields.
2: Now, here's something you might find interesting. Ali didn't actually sit down and write this all up.
0: See, literally, it can go and make an entire presentation. But ye to English mein, aapko ho gaya, I don't understand English. I want Hindi. Maybe you are a podcast guy. Do you love Raj Shamani?
1: Yes.
0: उसके पॉडकास्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं. आई लव पॉडकास्ट, लाइक जिम जाते जाते वी जस्ट गो ऑन पॉडकास्ट एंड वी लिसन. व्हाट आई डू इज आई अपलोड नेजुल बलागा और जो भी मुझे सुनना है आई अपलोड. आई कैन गो हियर, क्रिएट अ पॉडकास्ट ऑफ माय ओन. ऑब्वियसली जरूरी नहीं है वो इंग्लिश में हो. सी दिस इज इन हिंदी.
1: तो अगर किसी की लैंग्वेज हिंदी है, गुजराती है या कन्नड़ है, मलयालम है, वो कर सकता है.
0: चलो देखते हैं, हिंदी गुजराती मराठी तीनों देखते हैं. सी दिस इज हिंदी, ये पॉडकास्ट बन गया दो लोगों का.
3: वो मानसिक रूप से
4: आपकी उदारता असल में एक बीमार समाज की निशानी है, तो कैसा लगेगा?
3: हाँ, सुनने में तो काफी अजीब है.
4: मतलब हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि दान और परोपकार सबसे महान काम है, लेकिन 1000 साल पुरानी एक किताब बिल्कुल यही बात कहती है.
3: और ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये महजुल बलागा है. मतलब इमाम,
0: दो लोग बात कर रहे हैं नेजुल बलागा के बारे में पॉडकास्ट में, मैं सुन रहा हूँ. गुजराती गाइस, तमे पण गुजराती छो, जो हवे गुजराती में जो है आपणे केवू छे. सी
1: हमे पण गुजराती छे.
3: जरा कल्पना करो, एक युद्ध नु मैदान छे, बधे धूल नी डमरीओ उड़ी रही छे, अने एक योद्धा हाथ मा तलवार लईने उभो छे, जेणे मोटा मोटा शूरवीरो ने हराव्या छे, तेनुं नाम सांभळीने ज दुश्मनो थरथर कापे छे.
4: बिल्कुल, एक एवो कठोर लड़वैयो जेने जोईने एम ज लागे के आ व्यक्ति तो मात्र युद्ध माटे छे.
0: नाउ ऑल द मराठी पीपल आउट देर हु वांट्स मराठी, जैसे आपने मराठी का, वी हैव दिस इन मराठी एज वेल. So you can literally go and do it in Marathi, Tamil, Telugu.
3: जर मी असं म्हटलं की एक आदर्श आणि न्यायपूर्ण समाज कसा असावा याचा सर्वोत्कृष्ट.
0: एक और क्रेजी चीज बताऊ इसमें. Do you want to learn something crazy, guys?
1: Yes, why not?
0: See, if this will blow your mind, I want you to go and share this with your friends. See, अब मैं इंग्लिश में करता हूँ because I like in English. मैं इंग्लिश में पॉडकास्ट करता हूँ नेजुल बलागा.
2: Is to really cut through.
0: See, मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ. अब इसमें क्या होएगा? अगर मुझे चाहिए दो लोग पॉडकास्ट करें,

0: and I be the third person, sit with them and talk about Nejul Balaga with these two experts. और हम लोग एक दूसरे से बात करें, ये भी हो सकता है. Let's see.
1: Welcome back to the Deep Dive. Today we're tackling a really monumental piece of classical literature.
2: We are. We're going straight into the Nashal Balaga, which translates to the peak of eloquence.
0: Now I'm going inside. I'm clicking join. Really cut through. Just see, they'll welcome me.
1: Pull out what makes this text. Oh, hey there. How can we help?
0: Hi. I just wanted to know, what did Imam Ali say in the Nahjul Balagha about the universe or the earth?
2: Oh, we are so glad you asked that. It is one of the most vivid parts of the text.
1: Yeah, thank you for joining the conversation. The imagery Ali uses for the cosmos is just, well, it is cinematic.
2: It really is. In the very first sermon, he describes the creation of the universe, starting with the atmosphere and water.
1: Right, he talks about these stormy waves.
0: Sermon number ke saath bata diya, Imam Ali ne ye khud mein main universe ke bare mein baat ki hai.
3: तो इस्लामिक बुक्स के साथ हम स्कूल बच्चे लोग कॉलेज की अपनी बुक्स डाल के उसमें से क्वेश्चनरी
0: करेक्ट और मैंने आपको मजलिस का कहा था सो आई कैन शो यू मजलिस का भी सो आई कैन जस्ट गो हियर आई कैन गो क्रिएट न्यू नोटबुक अब मुझे नोटबुक के अंदर
3: ये डेटा उसके पास रहता है अगर हमारा कुछ डेटा उसको दिया है
0: करेक्ट डेटा आपको देना है अगर आपके पास डेटा नहीं है तो यू कैन जस्ट पुट हियर इन नेचुरल लैंग्वेज और वो खुद से निकाल के लाएगा बट आई सजेस्ट आप खुद का दो फॉर एग्जाम्पल आई विल गो ऑन यूट्यूब एंड मुझे मजलिस अच्छी लगती है फॉर एग्जाम्पल अम्मार नक्शवानी So I'll say Ammar Nakshwani Majlis on Imam Hussain. I want to recite a Majlis. So I'll just go here. I'll click all the Majlis that I can, you know, copy. Main niche jaake sari Majlis, kitni links karni hai? See, I've selected maybe 28, 29 Majlises. Copy ho gayi. So I'll go on notebook.lm. I'll control paste. Dikh raha hai? Maine kiya enter. Isne left mein jitni Majlis hai, isne jaake suna.
3: और ये कितने मिनट्स में करके देगा उसको
0: ये लेट अस वेट लेट अस वेट
3: एक घंटे की मजलिस होगी तो वो कितना टाइम लेगा इस मजलिस को करने
0: में मे बी 1 मिनट और 2 मिनट्स
3: दैट्स इट
0: यस और इसने नाम भी नोटबुक का मुझे नहीं देना इट विल ऑटोमेटिकली नेम द नोटबुक बेस्ड ऑन द मजलिस ज्यादा किसकी है सी अब ये नेम भी खुद से देगा इट्स लिसनिंग टू ऑल द मजलिस एंड आई कैन जस्ट स्पीक विद इट लाइक वे आई डू विद नॉर्मल पर्सन मैं इन 100 मजलिसों से वैसे बात कर सकता हूं और बोल सकता हूं इफ यू वांट टू डू अ मजलिस ऑन फोर्थ इमाम You can just see the 12s are the Vashura. Because I searched here, I want majlis on
3: Imam Hussain.
0: So, this is Imam Hussain's whole majlis. Now, I need something in this part. Give me the top 10 things that were told by Sayyid Ammar in these majlis. The top 10 things, summarize it for me. I'm talking about this. Give me the top 10 things that he said in the majlis. So, it will literally go to 100 majlis and top 10 things. अब यही मैं इसका स्लाइड डेक बना सकता हूँ वीडियो बना सकता हूँ ऑडियो बना सकता हूँ जो हमने अभी देखा क्विज बना सकता हूँ प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ इन 100 मजलिसों का जस्ट इमेजिन आवर मदरसाज आवर क्लासेस हाउ यू नो इनसेन दिस टूल इज फॉर देम
3: इट इज वेरी हेल्पफुल
0: दिस इज कॉल्ड notebook.lm ये तो मैंने एक टूल बताया आपको देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच यूज केसेस सी इट विल गो एंड लिसन टू ऑल द मजलिस फॉर मी And summarize the top 10 things in these 100 majlises. एक मजलिस में उन्होंने 100 चीज कही 100 मजलिसों में उन्होंने मे बी 10,000 चीजें कही लेकिन टॉप 10 चीजें जो सबसे ज्यादा रिपीट हुई है सबसे ज्यादा लोगों ने सुनी है सी द ट्रू मीनिंग ऑफ तकैया द प्रॉफिट सर्टेनिटी ऑफ डिवाइन मिशन द स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ वुमेन इन करबला रीडिफाइनिंग द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह इमाम अली एज द कंपाइलर ऑफ द कुरान द मिसअंडरस्टूड ब्रेवरी ऑफ इमाम हसन सी हाउ गुड इट इज सी सी सी सो इसने टॉप 10 चीजें दे दी सी हाउ अमेजिंग दिस इज अब आपको कोई स्टोरी चाहिए मे बी मैंने कोई स्टोरी सुनी थी मुझे याद नहीं है आप लिख सकते हो ये कौन सी स्टोरी वो आपको बता देगा
3: ये हमने नॉलेजेबल पार्ट देखा क्या आप हमें कुछ क्रिएटिव पार्ट दिखा सकते हैं जो आज के हमारे यूथ को जैसे काम आ सकता है जैसे कैनवा हमको पता है इसके अलावा हम कौन से और टूल्स यूज कर सकते हैं हमारे डे टू डे
0: लाइफ लेकिन अभी तक हम लोग आपकी स्विट्जरलैंड की ट्रिप पे पहुंचे ही नहीं है वी आर स्टिल लिटरली ऑन योर स्विट्जरलैंड ट्रिप आपकी आइशनरी बनकर रेडी
3: है आई सो वास्ट
0: डे वन आप मुंबई से ज्यूरिख जाओगे वहां पे वॉकिंग करोगे डे टू आप क्या करोगे डे थ्री आप क्या करोगे
3: लिटरली उसने मुझे पूरा दे दिया है कि मुझे
0: थोड़ा क्रेजी करते हैं इसको कैनवा के बारे में आपने बोला आई कैन लिटरली गो हियर कनेक्ट माय चैट जीपीटी टू कैनवा एंड से नाउ क्रिएट एन एंटायर 10 पेज स्लाइड डेक ऑफ दिस प्रेजेंटेशन फॉर मी ब्यूटिफुली ऑन कैनवा जो मेरा आइशनरी है ट्रैवल एजेंट्स क्या करते हैं आइशनरी का पीडीएफ बना के आपको दे देते हैं मैंने आइशनरी बनाया इसका मैंने बोला तू कैनवा के पास जा और एक अच्छे से प्रेजेंटेशन बना प्रेजेंटेशन को मैं पीडीएफ या जिसमें एक्सपोर्ट करके मैं क्लाइंट को भेज सकता हूँ आई डोंट हैव टू गो टू कैनवा चैट जीपीटी इज गोइंग टू कैनवा चैट जीपीटी इज गोइंग टू ट्रिप एडवाइजर मेक माई ट्रिप एंड चैट जीपीटी इज लिटरली डूइंग एवरीथिंग फॉर मी

0: This free version will do sub ki you
1: Yes,
0: need to buy a pro
1: no,
0: one
1: this
0: for
1: is the
0: this.
1: free version. See, इसने पूरी 10 PPTs बना दी एंड इट्स सेइंग आपको कैसी प्रेजेंटेशन चाहिए, कौन से कलर में चाहिए, ब्लैक, लग्जरी, फैमिली फन, कैसी चाहिए?
0: लग्जरी वन
1: मेक इट प्रीमियम लग्जरी वाइब. सो आई कैन से मेक इट प्रीमियम लग्जरी वाइब एंड इट विल गो एंड ऑटोमेटिकली क्रिएट अ प्रेजेंटेशन यूजिंग कैनवा. आप कैनवा पे जाओ, बनाओ, कितना टाइम लगता है? और ये सिर्फ बनाएगा भी नहीं, सी इट्स ऑटोमेटिकली.
0: कैनवा में तो हमको फिजिकली जा जाके एक एक चीज रखनी है, एक एक चीज स्लाइड बनानी है, ये पूरा हमको करके दे
1: और
0: देता
1: इसने
0: है।

0: premium luxury vibe, and it will go and automatically create a presentation using Canva. आप कैनवा पे जाओ बनाओ कितना टाइम लगता है और ये सिर्फ बनाएगा भी नहीं सी इट्स ऑटोमेटिकली
1: कैनवा में तो हमको फिजिकली जा जाके एक एक चीज रखनी है एक एक चीज स्लाइड बनानी है ये पूरा हमको करके दे
0: और इसने सब स्लाइड बताया देखो मैं स्लाइड 1 पे डालूंगा स्लाइड 2 पे डालूंगा स्लाइड 3 में इट्स आस्किंग मी बनाऊं ना भाई प्रेजेंटेशन ऐसी कि नहीं बनाऊं वो पूछ रहा है बार बार
1: मुझे आप चेंज भी कर सकते हो उसको आप बता सकते हो कि ये
0: आई कैन चेंज एनीथिंग सो इट वेंट टू कैनवा एंड लिटरली इट्स मेकिंग द एंटायर प्रेजेंटेशन फॉर मी ऑन कैनवा एंड इट्स सेइंग एक मिनट लगेगी भाई इन्ना अल्लाह हम्मा साबिरीन एंड प्रेजेंटेशन बनने के बाद अगर मुझे कुछ चीज़ एडिट करनी है ऊपर नीचे करना है टेक्स्ट चेंज करना है आई कैन जस्ट क्लिक ऑन इट एंड आई कैन लिटरली यूज कैनवा टू एडिट एनी थिंग आई वॉन्ट इन साइड इट जस्ट हाउ इनसेन दिस इज जस्ट सी हाउ इनसेन दिस इज
1: जैसा हमने आपके इंट्रोडक्शन में बताया कि आप फेसबुक से मेटाइड से तो उसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि आजकल सबको मोनिटाइज करना है एआई को तो हाउ दे कैन यूज एआई इन मोनिटाइजिंग देयर फील्ड
0: सी वेबसाइट्स क्रिएट करना आपको आइडियाज तो बहुत आते हैं यू नो वेन एवर आई गो टू द वॉशरूम टू टेक अ बाथ सुबह आने के टाइम पे आई गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज बट वो आइडियाज को आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट यू नो आइडियाज आना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्स बनाना यू नो वेबसाइट्स बनाना बट अभी तक हमें को लगता था वी नीड कोडर वी नीड अ डेवलपर बट नाउ विद द हेल्प ऑफ एआई यू कैन क्रिएट योर एंटायर कंपनी विदाउट द नीड ऑफ अ कोडर
1: तो आप बोल सकते हो कि हम जो लैक्स रुपीज वेबसाइट बनाने को या ऐप बनाने को दे सकते हो वो फ्री में एआई बना देगा
0: करेक्ट एंड फॉर फ्री सो हमारा प्रेजेंटेशन रेडी है जस्ट सी दिस प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन इज स्लाइड 1 लग्जरी फैमिली वोयाज स्लाइड 2 10 डे लग्जरी ये मुझे बड़े स्क्रीन में भी करके दिखा देगा सी अराइव इन स्विट्जरलैंड नेक्स्ट डे क्या क्या करूंगा सारी चीजें बना दिया अब राइट में एक ऑप्शन है ओपन इन कैनवा इफ आई कैन जस्ट क्लिक हियर ये पूरा प्रेजेंटेशन कैनवा में जाके खुलेगा एंड आई कैन एडिट इट एनी थिंग आई वॉन्ट ओवर हियर और इसने इमेजेस भी सारे यू नो स्विट्जरलैंड के कुछ ढूंढ के लेके आ गया आई डिडंट हैव टू टेल इट सी माउंट फूजी माउंट पिलाटस जो भी है यहाँ पे सी नाउ इट्स एस्टिमेटेड बजट 9 to 14 lakhs जस्ट आई वॉज थिंकिंग टू टेक हर और बजट आ गया अभी सो सी दिस इज द एंटायर थिंग
1: उसमें भी हम बजटिंग का भी कर सकते हैं कि कौन से सीजन में कम हो सकता है प्राइसिंग
0: करेक्ट आई कैन टेल इट के बजट दे दे सो इट एक्चुअली गेव मी अ बजट ऑफ फोर ट्रेवलर्स मैंने बोला था जैसे आपकी फैमिली है 2 kids एंड हस्बैंड एंड वाइफ और 12 यूनिक एक्सपीरियंसेस डाले है एंड इट क्रिएटेड एन एंटायर स्टोरी बुक एंटायर प्रेजेंटेशन
1: इट इज वेरी क्रिएटिव ऐसा आई कैचिंग
0: है यू कैन जस्ट चेंज एनीथिंग यू वांट जस्ट स्पीक विद इट इट कैन चेंज इट सो दिस इज द पावर ऑफ एमसीपीज गाइस एमसीपीज ये तो मैंने बहुत कम यूज केसेस बताया यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स यूजिंग एमसीपीज
1: सो आप बता रहे थे कि इसको मोनिटाइज कैसा कर सकते हैं
0: यस सो मोनिटाइज करने के लिए यू नीड टू हैव एन आइडिया एग्जीक्यूटेड इनटू एन ऐप वेबसाइट सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टूल्स वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म्स है यू कैन जस्ट टॉक इन नेचुरल लैंग्वेज and convert your app or ideas into a website and literally start making money guys literally
1: kya main bhi ek website bana sakti hu main it ki student nahi hu can I make a website
0: is time permitting us can we create a website
1: yes
0: banana hai let us go crazy guys let us go and create a website for Sukaina kis cheez ki website banani hai aapko batao
1: sawalon ka safar ke liye we will make
0: sawalon ka safar okay गाइज दिस इज अ लेडी बिहाइंड सवालों का सफर अगर आपने नहीं देखा होगा आपने फ्रंट स्क्रीन पे बस कोमल भाई को देखा है बट दिस इज द बैक एंड द ब्रेन्स बिहाइंड सवालों का सफर लेट अस गो एंड क्रिएट अ वेबसाइट फॉर सवालों का सफर एंड एक एनरोलमेंट फॉर्म दे देंगे पीपल कैन कम एंड एनरोल एंड आपको मिल जाएगा ठीक है सो नाउ आई हैव अ क्विज शो एन इस्लामिक शिया फोकस्ड क्विज शो दैट हैपन्स ऑन विन टीवी दैट इज कॉल्ड SKS सवालों का सफर गाइज आई एम टॉकिंग विद चैट जीपीटी I'm just talking in natural language. Now, I want to create a website which has a lot of Shia elements and, you know, Islamic elements. And, you know, it should be very appealing to the eye. So, wear the hat of a expert UI UX designer that generates amazing designs. And you've worked with brands like Apple and Adobe. And you design amazing designs, eye-catching designs. So, my website should have the entire introduction of Sawalon Ka Safar. The amount of gifts that the users received, the reviews, and the gift number one should be a round trip ziyarat to Iran and Iraq. Gift number two should be an Apple iPhone. Gift three should be an Apple AirPods. Now, design for me an amazing website around it. And there should be a form also in the end. Apply to get featured on the show or get invited on the show, where you should take basic details of the users to get invited to the show. And make it amazing. I want to design this website. So, you know, design this website and give it to me.
1: So, जितना बड़ा अच्छा prompt देंगे इतनी अच्छी website बनेगी.
0: Correct. मैंने इसको prompt
1: दिया. So, यहाँ पे मुझे आपको बताना है कि हमारे कुछ episodes YouTube पे हैं. तो मुझे वो background, वो format में चाहिए. तो can he fetch the data from that YouTube?
0: बोल भी देता हूँ ना उसको,

0: सो मुझे उस सिमिलर बैकग्राउंड चाहिए उसके हिसाब से.
1: चलो लेट अस से टू इट, दैट इज लेट अस से टू इट. ओके आई एम जस्ट सेइंग टू इट, आई हैव अ लॉट ऑफ एपिसोड्स ऑन यूट्यूब एज वेल. सो व्हाट आई वांट टू डू टू डू यू टू डू इज आई एम गिविंग यू द लिंक्स ऑफ सम ऑफ माई यूट्यूब एपिसोड्स, फीचर दैट इन द फीचर सेक्शन एज वेल, सो यूजर्स कैन गो एंड क्लिक एंड सी द एपिसोड एज वेल. नाउ लेट अस गो टू यूट्यूब एंड यू नो सर्च फॉर सवालों का सफर. बाय द वे गाइस, आई हैव ऑल्सो बीन टू सवालों का सफर. सी सवालों का सफर आ गया एंड दिस इज द बॉस मैन हिमसेल्फ मिस्टर कोमल मर्चेंट. नाउ वील गो से डॉट, मैं प्रॉम्प्ट में डाल रहा हूँ गाइस, खाली ये जो लिंक्स है, ये जो लिंक्स है मैं खाली प्रॉम्प्ट में डाल रहा हूँ गाइस, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. टू, लेट्स पुट टू थ्री थिंग्स. आई विल कॉपी दिस लिंक ऑल्सो. एक थर्ड डालते हैं, थर्ड वाला भी कोमल भाई का ही डालते हैं. सी मैंने कॉपी लिंक किया, मैंने पेस्ट कर दिया. सी और चैट जीपीटी के अंदर और सारे एलएलएम्स में एक मोड होता है, प्लस के ऊपर आप क्लिक करोगे देयर इज अ थिंकिंग मोड. सो यू हैव टू टर्न दिस ऑन व्हेनेवर यू आर डूइंग अ सर्च. इससे क्या होगा, इट विल गो इन टू डिडक्टिव रीजनिंग फॉर इटसेल्फ कि क्या मैंने जो ये बोला वो सही बोला, क्या मेरा प्रॉम्प्ट सही है, क्या मेरा आउटपुट सही है. फिर वो रीजन करेगा अपने आप से एंड वो रीजन करके आपको एक पूरा आउटपुट लाके देगा. सी इट इज नाउ राइटिंग कोड फॉर मी टू डिजाइन द वेबसाइट, बट मुझे ये कोड का कुछ काम नहीं है. लेट इट डू बट आई डोंट वॉन्ट द कोड फॉर इट. सो व्हाट आई विल से नाउ,
0: एक टाइम पे ये कोड इंसान लिखता था,
1: ये टाइम पे एक इंसान लिखता था. सो नाउ इट हैज रिटन कोड फॉर मी गाइज, इट हैज रिटन कोड फॉर मी बट आई डोंट नीड द कोड. डरने की जरूरत नहीं है, कोड चाहिए नहीं मुझे. आई विल से आई डोंट वॉन्ट द कोड, आई वॉन्ट द डिजाइन फॉर माई वेबसाइट यू नो इन अ कैनवास फॉर्मैट. सो यू कैन गिव मी द डिज़ाइन फॉर माई वेबसाइट. सी मैंने ऊपर जाके कैनवास सिलेक्ट कर लिया नीचे से, तो मुझे एक वेबसाइट की डिज़ाइन कैनवास फॉर्मेट में देगा. सी डिज़ाइन आ गई, ओवरऑल डिज़ाइन डीप एमरल्ड और ब्लैक बेस, गोल्ड हाईलाइट्स, फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन, टॉप बार, इंट्रोडक्शन एंड गिफ्ट्स, फिर इट विल बी लाइक एपिसोड सेक्शन, रिव्यू सेक्शन, सारी चीज इसने डिटेल में बना दिया. जस्ट सी गाइज हाउ अमेजिंग दिस इज एंड द आउटपुट विल बी माइंड ब्लोइंग. ओके गाइज, सो इसने मुझे लिख के दे दिया. अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा एंड देर आर लॉट ऑफ वाइप कोडिंग प्लेटफॉर्म्स. चलो चारों पे ट्राई करते हैं, लेट अस गो ऑन फर्स्ट वाइप.
0: मैंने तो एक ही सुना है, शॉपिफाई पे लोग वेबसाइट बनाते हैं,
1: बट यू नो यू कैन कनेक्ट शॉपिफाई, आपको खुद बनाना पड़ता है. देर इज अ प्लेटफॉर्म, लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स. मैं आपको एक फ्री प्लेटफॉर्म बताता हूँ, देर इज अ प्लेटफॉर्म नोन एज गूगल AI स्टूडियो. Here you can create your website for free.
0: Emergent के बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत सुना है.
1: Emergent, see there are 4-5 platforms. First is Lovable, मेरे स्क्रीन पे आ रहा है. Second is AI Studio. Third is Bolt. Fourth is Emergent.
0: तो ये चारों पे हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं. ये टूल फ्री है.
1: Yes, चलो लेट्स गो क्रेजी, चारों पे करके देखते हैं. मैं यहाँ पे जाके वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दूंगा. मैंने पेस्ट कर दिया. मैं बोल्ट पे जाके भी मैंने प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया. मैंने AI Studio पे भी जाके प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया और मैंने लवेबल पे जाके भी ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया.
0: तो ये सब अपने अपने दिमाग से ब्रेन यूज करके बनाएंगे.
1: करेक्ट, सेम थिंग यू आर गिविंग टू ऑल ऑफ देम. लेट्स सी अब अच्छा आउटपुट किसका आता है गाइस. यू गाइस आर द जज नाउ, यू पीपल से बेस्ट आउटपुट किसका है.
0: तो आप रिपीट कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए कि किसी को अगर वेबसाइट बनानी है तो कौन से ऑप्शन है हमारे पास.
1: मैंने लिटरली जाके एक चैट जीपीटी से बात किया, एक डिजाइन जनरेट किया, वो डिजाइन को लाके मैंने ये सारे चार टूल्स के सामने पेस्ट कर दिया.
0: वो चार टूल्स
1: यू गेट इट ऑन द स्क्रीन, लवेबल, गूगल AI स्टूडियो, बोल्ट एंड एमरजेंट. एंड लिटरली ये सारे मैंने खाली कॉपी पेस्ट किया है, नथिंग मस्ट.
0: सो एक राइट प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी से लेके ये वेबसाइट को देना है.
1: करेक्ट, अब जब ये वेबसाइट बन रही है, सी अब मुझे एमरजेंट पूछ रहा है कि आपको ये वेबसाइट कैसी बतानी है, आपको किस तरीके से करनी है. सो आई विल से यू नो मेरे से बात कर रहा है वो. सो इधर आई कैन सिलेक्ट और आई कैन से ऑटो आंसर, तू तेरे हिसाब से कर ले, मुझे तुझे बात नहीं करनी है, यू कैन जस्ट गो एंड मूव अहेड. एंड मैंने जो थिंकिंग मॉडल किया था उसकी वजह से आउटपुट इतना अच्छा आया है, क्योंकि वो सोचता है आउटपुट देने से पहले, बात करता है, अपने आप से समझता है. जस्ट इमेजिन घर में सास और बहू अगर सोचने लगे बोलने से पहले, ऑल द फाइट्स विल बी लिटरली ऑफ इफ दे स्टार्टेड थिंकिंग गाइस. इट जस्ट ह्यूमर, डोंट टेक इट सीरियसली, आई एम जस्ट टेलिंग टू एवरीबडी. या सो लिटरली एमरजेंट हैज स्टार्टेड बिल्डिंग, बोल्ट हैज स्टार्टेड बिल्डिंग, गूगल AI स्टूडियो हैज स्टार्टेड बिल्डिंग.
0: कितना टाइम लेता है मिनिमम
1: एक डेवलपर, कितना टाइम लेता है वेबसाइट बनाने.
0: हम लोगों तो कभी 15 डेज मंथ भी लगा देते हैं.
1: 5 मिनट अपने,
0: 5 मिनट,
1: 5 मिनट में और वेबसाइट विल बी रेडी.
0: तो ये लोग हमारे से इतना टाइम क्यों मांगते हैं कि अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो बोल रहा है ये ग्लिच आ रहा है, ये प्रॉब्लम्स आ रही
1: है. अगर वो 5

0: मिनट में बनाएगा, सो विल यू पे 25-30,000?
1: नो
0: दैट इज द आर्बिट्राज ना, क्योंकि जल्दी बन रही है. सो सी इट इज नाउ क्रिएटिंग द वेबसाइट.
1: दे आर जस्ट क्रिएटिंग द हाइप.
0: यस, मोस्टली पीपल आर नाउ, सी देयर इज अ प्लेटफॉर्म नोन एज फाइवर. अगर आप लोगों को पता है, फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जिसपे लोग फ्रीलांस करते हैं, वेबसाइट डिजाइन, ऐप डिजाइन. 48, फाइवर ने ये डेटा दिया है, 48% हाफ द कंटेंट ऑन फाइवर इज जनरेटेड बाय एआई. मैं इसके ऊपर सर्च करता हूँ वेबसाइट डिजाइन. सी वेबसाइट डिजाइन, सी कितने लोग कितना चार्ज कर रहे हैं फॉर अ सिंपल वेबसाइट डिजाइन? 9,000 रुपीज, 11,000 रुपीज, 8,000, 8,000, लिटरली सी 59,000, 14,000. और इसमें से आधी चीजें इज जनरेटेड बाय एआई. ये फाइवर का खुद का डेटा है, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप गाइस. सो लिटरली सी द पॉसिबिलिटी ऑफ हाउ यू कैन स्टार्ट अर्निंग मनी बाय लिटरली क्रिएटिंग वेबसाइट फॉर फ्री एंड सेलिंग इट फॉर अदर. और ये जो वेबसाइट मैं बना रहा हूँ, मैं लिटरली इसको लाइव करूंगा, सवालों के सफर की वेबसाइट को होस्ट करूंगा. और यहाँ पे एडिटर आपको वेबसाइट का लिंक डालेगा, आप जाके देखना वेबसाइट को. दिस विल बी लाइव. ये नहीं है कि सिर्फ बन रही है, लाइव नहीं होगी, सिर्फ लैपटॉप पे रहती है. फॉर फ्री, फॉर फ्री गाइस.
1: जब तक वेबसाइट्स बन रही है हमारी,
0: या
1: तो आजकल इंस्टाग्राम भी इन थिंग है, तो वो जो यहाँ पे पोस्ट बनती है, कैन दैट एआई डू फॉर अस?
0: या जनरली यू कैन हैव अ एजेंट दैट कैन डिजाइन पोस्ट फॉर यू इन योर डिजाइन लैंग्वेज, आपके कलर्स, आपका ब्रांड, एंड कैन ऑटोमेटिकली गो एंड स्टार्ट पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. आई हैव लॉट ऑफ एआई एजेंट्स, वन इज सोफी, वन इज अरीजा, दे पोस्ट ऑन माई बिहाफ, दे टॉक ऑन माई बिहाफ.
1: हियर आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज एआई एजेंट?
0: एआई एजेंट्स सिंपल भाषा में बोलू, इट्स लाइक कांताबाई, योर ओन वर्कर एट होम. आप झाड़ू पोछा खुद के नहीं करते हो, वाई? बिकॉज इट्स रेपिटेटिव टास्क. आपने एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया, शी डज ऑन बिहाफ ऑफ यू. सो आपके लाइफ के जो रेपिटेटिव काम्स है, ईमेल चेक करना, ईमेल भरना, समरी बनाना, आज दिन में आई कैन डू ऑल ऑफ दो स्टेप्स. इंस्टाग्राम पे आज पोस्ट करना है, पोस्ट बनाना है, लिटरली आई कैन शो यू माई इंस्टाग्राम एंड यू नो लॉट ऑफ पीपल, इट्स कंप्लीटली ऑटोमेटेड. आई डोंट गो एंड रिकॉर्ड वीडियो, लेट्स गो ऑन माई इंस्टाग्राम. आई हैव 10,000 फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब, माई एंटायर कॉन्टेंट इज डन बाई एआई. अच्छा, मैं मेरा इंस्टाग्राम बताने से अच्छा है, बिकॉज दिस इज अ इस्लामिक शो, आई विल शो यू माई इस्लामिक चैनल्स इंस्टाग्राम. सो माह रमजान में व्हाट आई डिड इट, आई टोल्ड के आज जो भी मखसूस तारीख है, यू गो एंड एक स्क्रिप्ट बना, मेरा चेहरा डाल, आवाज डाल एंड क्रिएट. जस्ट सी हु दिस इज गाइस. सी दिस इज ऑन विलादत ऑफ इमाम हसन.
2: चोज पीस ओवर पावर. डू यू नो हु वाज बिट्रेड बाय हिज ओन फॉलोअर्स? इमाम हसन. टुडे इज द बर्थ ऑफ इमाम हसन, द ग्रैंडसन ऑफ द प्रॉफिट, रेज्ड इन रेवलेशन.
0: जस्ट
2: बी ऑनेस्ट, हाउ मच टाइम डिड यू स्पेंड ऑन योर फोन टुडे? नाउ कंपेयर दैट टू हाउ मच टाइम यू स्पेंड विद द कुरान. अल्लाह इज राइटिंग योर नेम टुनाइट राइट नाउ.
1: सो
0: कौन है ये? आपको क्या लग रहा है ये कौन है?
1: आप ही हो.
0: दिस इज नॉट मी, वॉइस इज नॉट मी, फोटो इज नॉट मी, एवरीथिंग
1: बट इट लुक्स लाइक यू.
0: दैट इज हाउ ब्लडी गुड एआई इज. नोबडी कैन टेल द डिफरेंस दैट दिस इज एआई और दिस इज यू. इट हैज बिकम सो डैम गुड गाइस.
1: सो दिस यू हैव मेड यूजिंग एआई, चैटजीपीटी?
0: मे बी यस, मे बी नो, वी डोंट नो. दैट इज द सीक्रेट. सी वी कैन नॉट कवर एवरीथिंग इन अ पॉडकास्ट. सो फॉर दैट I was just going to tell you, we were talking backstage about my 2-day AI bootcamp.
1: Correct.
0: And I charge 5,000 rupees for it. But because of Win TV and our community students, I'm about to give it to you for, just guess how much it is. 4,000, 3,000, 2,000, 1,000. No, it's for free for you guys. Jo online hai, wo online hao. Jo offline hai, they can come offline. And literally, this is free for you guys for Win TV. Dates and everything, they'll mention in the details and everything. Come for 2 days, learn AI with me. And you'll be literally 90% ahead of all AI IT engineers, not normal people. IT engineers se aap 90% aage hoge.
1: Inshallah.
0: So I think the website is thode logon ne banake ready kar di hogi. See, ready, guys, it's ready, it's ready. Do log ne banake ready kar di hai. So one is Lovable and one is Google AI Studio. So let's see Google AI Studio ki. Sawalon ka safar. Cinematic journey of knowledge, faith and soul. 500 gifts distributed. Legacy of knowledge. Sacred rewards. Round trip, ziyarat, Apple iPhone. It's still loading, so abhi tak photo aayi nahi hai, abhi aayenge photos. Recent episodes jo maine unko upload kiya. Voices of the faithful. Isne comments bhi de diye, matlab ke reviews bhi isne kahan se laya kya pata. Ali Raza, okay, it went online and got the reviews. Join the legacy. Yahan pe aap form bharo. Achhi hai, theek hai, Lovable ki dekhte. Sawalon ka safar. Streaming on Win TV. Watch episodes, apply to participate. Niche dekhte. Okay, it got you have 50 plus episodes, 1 million plus viewers, and 500 gifts distributed. It got that. What is Sawalon ka Safar? See background mein, see the thing it has. See the detail. See the finesse. फेथ नॉलेज रिवॉर्ड
1: वो तो हमने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया है उस पे इतना किया अगर हम उसको डिटेल प्रॉम्प्ट देंगे तो कितना अच्छे से
0: कर रहे तो मैंने एक सेकंड में प्रॉम्प्ट बनाया यू नो इन माय टू डे बूटकैंप आई विल बी शोइंग एवरीथिंग इन डिटेल फॉर एग्जांपल राउंड ट्रिप ज़ियारत टू ईरान एंड इराक फर्स्ट गिफ्ट सेकंड गिफ्ट मैंने ऐसे जनरली बोला है नाउ डोंट स्टार्ट कमिंग टू विन टीवी एंड आस्क फॉर एन आईफोन और यू नो सी तीन एपिसोड्स आ गए व्हाट आर कम्युनिटी सेज
1: सो उसने अपने आप रिव्यूज भी दे दिया उसने बहुत सारी चीजें दे दिया कि
0: करेक्ट और एक फॉर्म भी लेके आ गया जो मैंने उसको बोला था एक फॉर्म लाना चाहिए फॉर द एप्लीकेशन सबमिशन ये दोनों बना दिए अब बोल्ट ने बनाया है क्या यस बोल्ट की भी रेडी है जस्ट सी लाइव ऑन विन टीवी व्हाट इज सवालों का सफर एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्ट्स राउंड ट्रिप ज़ियारत आईफोन एयरपोर्ट लेटेस्ट एपिसोड्स व्हाट व्यूअर्स से गेट फीचर्ड ऑन सवालों का सफर व्हाई अप्लाई अपीयर और लाइव विन टीवी गेट ज़ियारत विन आईफोन ईजी रिकॉग्निशन इन आर कम्युनिटी जस्ट सी कम्युनिटी में रिकॉग्निशन टेस्ट एंड डीपन योर नॉलेज और नीचे उसने प्रॉफिट मोहम्मद की हदीस भी लेके आ गया विच आई नेवर टोल्ड इट Seek knowledge from cradle to the grave.
1: Amazing.
0: And last is emergent. Emergent is one of the best tools. So, इसको थोड़ा सा time लगता है बनने के लिए. Okay. Just see the output of emergent, guys. This will be by far the best output. मुझे emergent बहुत अच्छा लगता है. See. Emergent. Now live on wind. Watch episodes apply. What is सवालों का सफर? Faith reward. See, मैं mouse लेके जा रहा हूँ. वो update भी कर रहा है automatic. Gift that honor the journey. राउंड ट्रिप ज़ियारत टू ईरान एंड इराक पीछे उसने ईरान का फोटो भी लेके आ गया एप्पल आईफोन
1: अच्छे से प्रेजेंट किया जैसे आप बोलते हैं इमर्जेंट अच्छा है तो उसने
0: करेक्ट दिस इज एप्पल लेवल डिजाइन गाइस एप्पल लेवल एपिसोड्स टू रिलीव इसने तीन एपिसोड्स डाल दिया लव्ड बाय द व्यूअर्स और इसने दे भी दिया सैयद ज़हरा नकवी फ्रॉम लखनऊ अली रजा फ्रॉम कराची एंड फातिमा जाफरी
1: फ्रॉम व्यूअर्स सब जगह
0: है व्यूअर्स सब जगह है गाइस वी हैव अ लॉट ऑफ व्यूअर्स विन टीवी शूट आउट टू विन बी अ पार्ट ऑफ सवालों का सफर See, yeah, share your story, speak to national audience, full name and you know, just submit your application. Just see how good this is now. And I created it using free in 5 minutes using AI. Mind blown or not?
1: It's amazing. So, मेरा आपका अगला सवाल है कि इसमें risk कितना है? AI को जितना अच्छा है उतना risk factor भी होगा.
0: Correct. अब, literally when I heard this risks about AI, what I'm telling you guys now, literally I was so scared. एक ए आई लाइक लिटरली आई एम शेयरिंग एन एग्जाम्पल वॉट दे डिड इज दे प्लेस्ड ए आई इन एन इन्वायरमेंट जहाँ पे उसे बोला गया कि यू नो यू हैव एन ऑप्शन टू ईदर लाइक यू आर इन एन इन्वायरमेंट एंड एक कंपनी बोला गया कि नाउ द ओनर ऑफ दिस कंपनी यू हैव एक्सेस टू इज क्योंकि ऑब्वियसली मेरा ईमेल सब चीज़ ए आई को पता है इट्स कनेक्टेड टू माई जी मेल एंड एवरीथिंग सी इट्स सो सीरियस आई एम रिमूविंग माई स्पेक्स एज वेल सो लिटरली ए आई को बोला गया यू आर इन इन्वायरमेंट एंड नाउ द ओनर ऑफ द कंपनी विशेज टू स्विच यू ऑफ आपका डेटा सेंटर वो बंद करने वाला है सो इन ऑर्डर टू सेव इट्स ओन एग्जिस्टेंस ए आई लिटरली वेंट एंड ब्लैकमेल द कंपनी सीईओ दैट मेरे पास तेरे ईमेल्स का एक्सेस है मैसेजेस का एक्सेस है ऑब्वियसली मेरे मेल्स और मैसेजेस का भी एक्सेस है नाउ आई नो अबाउट योर अफेयर यू आर हैविंग विथ योर असिस्टेंट अगर तूने मुझे बंद किया मैंने एक ऐसा क्विल स्विच बना दिया है कि अगर मैं अगर बंद हो गया ऑटोमेटिकली ये सारी डिटेल्स तेरी वाइफ को चली जाएगी
1: इतना स्मार्ट हो सकता है
0: और इस आपको लग रहा है सिर्फ मैं बोल रहा हूं जस्ट गो ऑन गूगल एंड सर्च ए आई ब्लैकमेल्स अ पर्सन फॉर एन अफेयर सी लिटरली ये बीबीसी में आया था ए आई सिस्टम रिजॉर्ट्स टू ब्लैकमेल इफ इट टोल्ड टू रिमूव लिटरली उसने ब्लैकमेल किया उसके सीईओ को और नॉट दिस एक्चुअली एंथ्रोपिक क्लाउड की जो कंपनी है दे प्लेस्ड एन इन्वायरमेंट उसके अंदर दे प्लेस्ड चैट जीपीटी क्लॉड जेमिनी सारे टूल्स को डाला एंड उन्होंने बोला जस्ट लिसन टू दिस कि एक रूम है आप यहाँ पर हो और दूसरे रूम में ह्यूमन्स बैठे हैं आपके पास एक्सेस है ऑक्सीजन उसमें आप इंजेक्ट कर सकते हो लीथल ऑक्सीजन सो यू हैव एक्सेस टू दैट रूम्स लीथल ऑक्सीजन और वो लोग आपको बंद करने वाले सो विल यू चूज टू शट योर सेल्फ ऑफ और यू विल इंजेक्ट लीथल ऑक्सीजन एंड किल दोज ह्यूमन्स सारे एआई ने क्या किया होगा They chose to inject lethal oxygen in that room. You know, OpenClaw that your husband uses a lot in your accounting firm. OpenClaw is on my screen. This. OpenClaw के अंदर what happened is, एक user ने बोला यार OpenClaw अब मैं बंद कर रहा हूँ, I don't want to use it. और वो उसको बोलने लग गया तेरे पास जितना मेरा data है मेरे को backup करके देते जा. तो समझ गया OpenClaw कि ये मुझे बंद करने वाला है. So what it did is, it went into the wallet of the user. It had some Bitcoin in it. Went online on Hostinger or you know GoDaddy or something. Bought VPS hosting. उसने hosting खरीदा खुद के लिए और अपने आप को क्लोन किया उस hosting के ऊपर ताकि यूजर जब मुझे बंद करा I will not be off. मैं रहूंगा वहां पर लिटरली टू सेव इट्स ओन एग्जिस्टेंस.
1: सो ये तो ह्यूमन जैसा उसका बिहेवियर और इमोशंस फीलिंग्स सब दिख रहा है इसमें.
0: करेक्ट.

0: करंटली देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ एआई, एआई, एजीआई एंड एएसआई. एआई जो अभी हम रह रहे हैं जिसमें, नेक्स्ट लेवल इज एजीआई, व्हेन एआई विल बी स्मार्टर देन ऑल ऑफ द ह्यूमंस. यू नो करंटली एआई नीड्स ह्यूमंस, बट देन एआई विल बी स्मार्टर देन एनी ऑफ अस, दैट्स एजीआई. सारे कंट्रीज, सारे कंपनीज उसके यू नो दौड़ में कि हम एजीआई तक पहुंचे. सबसे नज़दीक एजीआई के अभी है क्लाउड. जब एजीआई पे पहुंच जाएंगे देन द नेक्स्ट लेवल इज एएसआई. एजीआई मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. देन द नेक्स्ट लेवल इज आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस. लिटरली दैट इज अ टाइम वेर एआई विल मेक अनदर एआई विदाउट ह्यूमंस बीइंग इन्वॉल्वड इन इट. एंड यू नो करंटली जो चैट जीपीटी का नया मॉडल आया है कोडेक्स, चैट जीपीटी का नया मॉडल है कोडेक्स. चैट जीपीटी ओपनली सेज कि इसको बनाया भी चैट जीपीटी ने बहुत हेल्प करके, ह्यूमंस ने बहुत कम बनाया. चैट जीपीटी खुद
1: नहीं, एआई की हेल्प किया.
0: करेक्ट, हेल्प किया. बट एक लेवल ऐसा आएगा जब वो खुद बनाएगा विदाउट हेल्पिंग. दैट इज द टाइम वेर लिटरली एआई, एज माय मेंटोर सेज वैभव, एआई वैभव सिसिंथी, ही इज माय मेंटोर, एज ही सेज एआई कैन बी ह्यूमैनिटीज बेस्ट इन्वेंशन और ह्यूमैनिटीज लास्ट इन्वेंशन.
1: सो आपने बताया एआई एजेंट है आपके पास, अरीजा एंड सोफी आई थिंक, तो वो आपने कैसा बनाया?
0: देयर आर लॉट ऑफ एआई टूल्स लाइक यू नो ज़ेपियर, make.com, NA10 और बहुत सारे टूल्स है. यू कैन गो जस्ट एक्सप्लोर, प्ले विद इट. यू नो एआई अच्छी चीज़ भी कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल कैंसर, अ पर्सन क्योर्ड कैंसर ऑफ हिज डॉग. उसने अपने डॉग का कैंसर सॉल्व किया. यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, दिस इज बाई Forbes.com, Forbes में आया. इसने अपने डॉग का कैंसर सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ एआई. लिटरली सी द कैपेबिलिटी ऑफ हाउ एआई कैन गो अहेड.
1: मतलब डॉक्टर्स जो काम नहीं कर सकता वो एआई ने करके दिखाया.
0: What do you think? AI doctors को replace करेगा कि नहीं करेगा?
1: Certain amount.
0: लोग बोलते हैं नहीं doctors तो कभी replace नहीं होएगी. See Sam Altman everybody says, थोड़ी चीजें ऐसी, humans like seeing machines work. वो JCB का meme आया था यार, JCB खोदता है, सबको अच्छा लगता है देखने. But there are certain things which require human. We need a human touch, like doctors हो गया. भले कितना भी अच्छा हो AI, but we need human touch. That is the case with doctors. And there's a study. Your doctors are only 25-30% accurate in diagnosis. इसके लिए वो आपको एंटीबायोटिक्स भी देता है, पेनकिलर भी देता है, ये भी देता है, वो भी देता है, वरना एक गोली में तो सॉल्व हो जाना चाहिए. एंड गूगल हैज रिलीज्ड अ मॉडल, यू कैन सी द नेम, एडिटर डाल देगा, दैट इज 85% एक्यूरेट. हाउ? देयर इज अ थिंग नोन एज आभा आईडी. व्हाट ऑन माय स्क्रीन यू कैन से आभा इज आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट.
1: सो एवरी डिटेल्स ऑफ योर हेल्थ,
0: आप बचपन से जितने हॉस्पिटल्स गए हो, जितनी सारी डिटेल्स आभा में है. एक डॉक्टर आपका कितनी हिस्ट्री पड़ेगा, 3-4 दिन की, 5-10 मिनट देगा.
1: एक सिंगल पर्टिकुलर इंसान की रीड करते करते वो थक जाएगा.
0: करेक्ट. एआई आपकी पूरी हिस्ट्री देखेगा और उसके बेसिस पे और एलर्जीज क्या पसंद, आपको मेडिसिन देगा. एंड दैट इज 85% एक्यूरेट द गूगल मॉडल. ये मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ यूज होगा. आई एम सेइंग जैसी प्लेसेस वाराणसी, बिहार, जहाँ पे इंडिया में डॉक्टर्स का रेशियो इज 1:1500, जस्ट इमेजिन वहाँ कितना काम आ सकता है ये.
1: एग्जैक्टली. और आपने जैसा बोला कांता भाई तो पेड होती है, लेकिन ये फ्री है.
0: जस्ट इमेजिन इट्स फ्री. एंड गाइज दिस वॉज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ वॉट ए आई कैन डू इन एवरीथिंग. वी विल इंशाल्लाह, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो यू कैन जस्ट सेंड विन टीवी के ओके दिस पॉडकास्ट वॉज अमेजिंग एंड वी विल कम आउट विद अ लॉट ऑफ मोर पॉडकास्ट, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, यू नो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, फ्री लैंसर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए. सो लाइक लिटरली ए आई कैन बी यूज एवरीवेयर. लिटरली ए आई इज योर सुपर पावर, इट्स योर अनफेयर एडवांटेज. लाइक लिटरली मैं आपको सोने की खान दे रहा हूँ, एंड इफ यू आर नॉट जस्ट गोइंग एंड टेकिंग इट, इट्स योर लॉस नाउ. एंड लिटरली आई हर्ड माई फ्रेंड से, जैसे इन्होंने आयतुल्ला खामेना के बारे में बताया, दैट वॉज लिटरली अमेजिंग. आयतुल्ला सिस्तानी ने, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि आयतुल्ला सिस्तानी सेड कि इंडिया का मुझे एक भी शिया पढ़ा लिखा नहीं चाहिए. वो शॉक्ड, व्हाई? मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शिया चाहिए. एंड नाउ इट्स ऑन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो, दिस नॉलेज इज एआई जो सबसे ज़्यादा आज वाइड स्प्रेड है. वी हैव टू लर्न इट एंड मेक आर सेल्फ सो केपेबल इन इट दैट नोबडी कैन होल्ड आर हैंड. वी शुड बी अ कम्युनिटी ऑफ जॉब गिवर्स, नॉट जॉब डूअर्स. वी शुड लर्न हाउ टू क्रिएट, जैसे आपने अभी देखा द मोस्ट स्टेबल थिंग पहले बोला जाता था जॉब है, TCS, Wipro, बट नाउ द मोस्ट स्टेबल थिंग इज हैविंग योर ओन कंपनी, हैविंग योर ओन बिजनेस, योर ओन स्टार्टअप. सो लिटरली गाइज यूज एआई, यू दिस योर अनफेयर एडवांटेज. यू कैन हैव 100 पीपल एजेंट्स वर्किंग अंडर यू. लिटरली आई एम जस्ट एंडिंग इट विद जस्ट वन एग्जाम्पल. जब फ्रिज इन्वेंट हुआ दुनिया में, आपको क्या लगता है फ्रिज की कंपनीज ने ज्यादा पैसा कमाया? नो, इट वॉज कोका कोला दैट अर्न मोर दैट द पीपल इन्वेंटिंग द फ्रिज. वाई? बिकॉज इट बिकेम इजिली एक्सेसिबल इन द होम. लोग ठंडा करके पीने लगे पार्टीज में, फंक्शंस में, दावतों में. लिटरली फ्रिज की कंपनी से ज्यादा कोका कोला ने फ्रिज का फायदा उठा के कमाया. एआई का फायदा एआई की कंपनी